0: निकलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। वयस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में वयस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं, जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
1: देखिए, इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी यार क्या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र, ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है? ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें

0: या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा। दूसरी बात, सह फसली खेती की जाती है। सह फसली इसमें जो खेती की जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं, वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है, वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं। तो एक यदि हमने धान फसल लगाया, उसी के साथ साथ सह फसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सह फसली का इसमें ज्यादा वल होता है, सह फसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है, 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है, और 50% सॉलिड पार्ट होता है। यानी दोनों को यदि मिला दीजिए, हवा पानी को, तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं, और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है, मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं, और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए, जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं, तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वह उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
0: देखिए, आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं। एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन, और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं, तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जो मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा, और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं, या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन। इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा, तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए, और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप में कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब

0: क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताज्जुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इस का प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी, जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूपेण जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने

0: कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है, तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो

0: क्या जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य ऊर्जा को लेकर, सूर्य का प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी होगी नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी पोषक जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है, अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपने जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी एंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
1: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्र को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं ठीक है उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी जैसे मैंने बताया जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में

0: करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व तो जरूर डालते हैं हर फसल। मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्वों का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे। तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ, ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाइअमोनियम फॉस्फेट। ये आपको नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फास्फोरस भी प्रदान करता है। ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं। ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है। पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का, वो नहीं हो पाता है। और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है, फास्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। जो उनके आनुवंशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP, जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं, हमारा जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है। नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होते हैं। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है, क्षेत्र है, वहीं पर ये कमी आ रही है। और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता, जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशेष पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है, वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन, इसलिए हम कहते हैं ना एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं, आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं, जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं, उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं, जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व तो प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे, उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदि मिट्टी, उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि है हमारी, वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में, हमारे वर्षा के पानी में घुलकर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है, तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पाँचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को, जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं, जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कृषि तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को, मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है, वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और पांच छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए, कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे जाकर ये हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है, हमारा सीजन हो, और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं, अगर हम डालें या न डालें, हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पर जाते हैं, तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से, चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दें, तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको

0: लीच्ड आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधों को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूं, पीएच। आप जानते हैं पीएच हम करते हैं, जैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा जाता है, तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जिस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता हमारे पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, आज जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों एवं बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास हम मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियाँ जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया, और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं, यहाँ कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है, ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियाँ के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे कहीं गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है, तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य ये है, कवर मीन्स जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रह्मासी है, ब्रह्मासी है, ब्रह्मा बोले तो आप ईयर, होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प। आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढैंचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये भ्रमरसी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना, वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन, उससे वे फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और का फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद से, जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को आप बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तेलहन पौधे का उगाएं, दलहन और तेलहन पौधे का उगाएं। दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर, डाल रहे हो 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो, और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में, और उस कमी को, बहुत कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप फसल चक्र का जरूर अपने, और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें, और यही है इसके लिए। और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपकी फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं, और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक उर्वरक जो है वो, आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा, माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसको जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो इसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा, ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात बोला, मोटिवेशनल बात कहा, चाहे कुछ भी कहा, और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट है, क्या करता है, ये फॉस्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए, और फॉस्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने DAP का नाम बताया। इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है। और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है, तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मील में भी जानने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको भी क्या करता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है, ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गोबर खाद में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है, जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से, इनके ट्यूब से, इनके फली से क्या करना है, केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में। ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी, अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें, उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी। तो उस केस में हमें क्या होता है, जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है, तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक, जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोलकर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत, जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है।
1: टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
3: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात करते तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
5: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं, या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या BQ, एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और खास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेजी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में खास करके जो बीमारियां हैं HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलबढ़वा जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो 3 साल तक के उम्र के बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से, HSBQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
3: जी।
5: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठाइल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
3: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
5: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं इनके, इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते या जो काफी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गांव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज़ की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गाँव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहां पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहां पर, वहां हम लोग फीड ब्लॉक भी देके और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहां हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए जहां टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
0: उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
13: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद
13: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
14: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
14: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
14: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
13: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
15: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
16: जी
15: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
16: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
15: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तब बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल।

आपको ये कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने ये कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पे जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूँ और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहाँ बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है, लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए, तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर, अपनी ढपली अपना राग करके ढोलक बजाते रहते और गाना गाते रहते हैं। तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है, सोचो। बिल्कुल सही, हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है। है, एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और बादलों के बीच में एक जैसी है। तो तैयार हैं आप सब कविता की वे पंक्तियां सुनने के लिए? ठीक है, तो सुनिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यानी कि आप सारे बच्चे जिस तरह से शैतानियां करते हैं, बादल भी वैसे ही शैतानी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो शैतानी करते हैं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बादल क्यों शैतानी करते होंगे और बादल क्या शैतानी करते होंगे? तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल है कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर है, और बादलों की अम्मा उनके पीछे पीछे पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़े चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ है तो कभी उड़कर वहां चले गए। अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ? तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा, अपना घर खोज लेते हैं। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस

फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है। तो अम्मा कहती है, खीर ये रखी है और अब तुम खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है? हाँ, बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमाचौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्तों में लगाती हूँ। बच्चों, ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है? बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा? तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी, और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप टप टप टप टप टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे। ठीक है, कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता। और आपको इतना मौका मिलता है कि आप अपनी जेब पलट कर सारा पानी बाहर कर दें, नहीं मिलेगा, आप आजमा के देखिएगा। लेकिन जेब अपनी हो, किसी और की नहीं हो, वरना उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो आप भी ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे, नहीं उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पानी को जमा कर लूँ, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूँ उसे, ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूं या आइस क्यूब, जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूं, तो बताइए ये जो बर्फ है ये पानी में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी, थोड़ी देर के लिए तो टिकेगी, हालांकि वो टप टप टप टप टप टप गिरती चली जाएगी पानी की बूंदें, क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और वह जो बर्फ है वह पानी के रूप में बहने लगती है। तो मेरी जेब में तो पानी ठहर सकता है, लेकिन किस तरह से? ठोस रूप में, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ के तौर पर हमारी जेब में ये पानी ठहर सकता है थोड़ी देर के लिए, सही, लेकिन बाद में शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, ये पूरी की पूरी बर्फ पानी बन जाती है और टप टप टप टप टप टप शुरू हो जाता है।
तो आप भी ये करके देखिएगा कि पानी हमने नल से एक गिलास में पानी

0: भरा, थोड़ा सा पानी भरा, अपनी जेब में डाला तो पानी कहाँ गया, पानी सर से नीचे चला गया। अब हम अपनी जेब में बर्फ डालेंगे और आप देखें कि बर्फ हमारी जेब में ठहरती है या नहीं। अगर यही बर्फ बादल ने अपनी जेब में डाली होती और उसके पापा उससे कहते कि जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, पापा जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट। अब क्या होगा, ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है, ओले। ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी तो ये किस रूप में नीचे आई, ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी, यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे, और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था, लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप टप टप टप टप टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं, आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है। तो बच्चों क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है, अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है, ये भी ठीक है, इसमें हवा सनसन चलती है, ये भी ठीक है, इसमें बिजली चमकती है, वेरी गुड, और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चले सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया, हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया। अब बिजली के साथ क्या है, बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने, बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है और पानी के बरसने की आवाज क्या है, झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी, तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आएं। झमझम बरस रहा है पानी और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है, नानी। अब हमें करना क्या है, हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी, तो क्या हो सकता है, अब कैसे आएगी नानी। है ना मजेदार कविता, तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता, अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और अब बात करें अपने बिहार के, तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें, तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें, तो ज़्यादा ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ बरसों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है, और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
9: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
11: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे, जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो कैसे कैसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
9: तो सर अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
11: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं। आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते कोई भी काम उसको बोलते व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही। जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
9: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
11: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं, उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
9: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
11: जी जी हाँ।
9: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
11: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
9: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
11: देखिए एक एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उसे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है। और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
9: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
11: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिल के एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिल के एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए, तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
9: तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
11: जी देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए खाना हो जाए सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है हमारा लाभ कमाना आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
9: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
11: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया, वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा, हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां, जैसे हमने बात किया, तो उस चुनौतियां, सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियां, उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो जो आखिरी जो है निष्कर्ष, ये है सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
9: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी ही, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि,
12: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में. दोस्तों, यूं तो मक्का की जो फसल होती है वो काफी फायदा देती है हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन अगर कीट लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. किस प्रकार से आप कीटों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कीटों से मक्का के फसल को बचा सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं विस्तार से डॉक्टर किरण कुमारी से. मैम है कीट विज्ञान विभाग से, मैम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैम. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल को कौन कौन से कीट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं.
1: जी, मक्का फसल जो है वो हमारे बिहार के कंडीशन में सालों भर लगाए जाते हैं, यानी खरीफ, रबी और गर्मा, तीनों मौसम में जो मक्का है वो उगाया जाता है. और लगभग तीनों सीजन में मक्का को कीट जो है वो खाकर उसको हानि पहुंचाते हैं. और इन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में मक्का का तना छेदक कीट, कटुआ पिल्लू, सफेद ग्रब, लाही, फॉल आर्मी वर्म एवं कॉब बोरर कीट हैं.
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो आप हमें सबसे पहले बताइए मैम कि तना छेदक कीट, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है.
1: मक्का का तना छेदक कीट जो है, इसका वयस्क पतंग, जो पतंगा जिसको कहते हैं, जैसे वो मौत भी कहते हैं इसको, जैसे बटरफ्लाई होता है दिन में उड़ता है तो रात में उड़ता है, तो ये वयस्क जो है इसका पंख का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है. ये पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर पिल्लू जो भूरे रंग के होते हैं वो निकलते हैं. और ये जो पिल्लू हैं उनको लार्वा भी कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं. और इन पिल्लुओं के शरीर के ऊपर चार धारियां होती हैं और इनका सिर जो होता है, हेड, वो काला होता है. ये जो लार्वा या पिल्लू हैं ये पत्तियों के गाभा को खाते हैं. और पहले तो जो पत्तियां हैं उनको, चूंकि इनका जो जो लार्वा है, शिशु हैं पिल्लू, इनके जो शुरुआत में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ये पत्तियां चूंकि गाभा में ही मुड़कर रहते हैं और इन पर ये पिन, इनका माउथ छोटा होता है इसलिए पिन के बराबर छेद करके खाते हैं. और जब ये पत्तियां थोड़ा बाहर आती हैं तो ये पिन बराबर छेद जो हमारे वो दिखते हैं वो समानांतर रूप में दिखते हैं. फिर जब यही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो छेद थोड़े बड़े भी दिखते हैं और वो एकदम समानांतर में रहते हैं क्योंकि वो गाभा के अंदर ही काट कर उसको खाते हैं. फिर ये लार्वा जो है पूरे अंदर तने में प्रवेश करके नीचे तने तक, जो जमीन का लेवल है वहाँ तक भी चले जाते हैं और इस तरह से तनों को खाते हैं. और जिससे कि बीच वाली जो फुनगी होती है वो सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है. चूंकि ये बीच में, बीच की पत्ती सूखती है, बीच में खाते ही हैं वो, तो इसलिए वो जो है उसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी कहा जाता है.
0: जी मैम,
1: इसके कीट जो, ये जो है इसके बचाव के लिए जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटनी के बाद, खेतों के सारे जो भी अवशेष ठूंठ होते हैं उनको हटा देना चाहिए क्योंकि इसी में इसके जो पिल्लू होते हैं या एक पीपा होता है जिससे कि फिर वयस्क निकलते हैं, वो ये दोनों अवस्था लार्वा पीपा ये उन ठूठों में ही पाए जाते हैं और जमीन के अंदर वो घुस के रहते हैं. मई और जून के महीने में इसके खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए जिससे कि ये जो मिट्टी में पड़े हुए इसके लार्वा हैं, पिल्लू हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो जाते हैं और या तो चिड़ियां भी खा जाती हैं. और इसके नियंत्रण के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए. और जब फिर भी अधिक प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीट में फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या डेल्टा मेथ्रिन 1% का प्लस ट्राइजोफॉस 35 EC का मिक्सचर, ये कीटनाशी है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, ये तो बात हो गई तना छेदक कीट के बारे में। मैम, कटवा पिल्लू भी लगते हैं मक्का के फसलों में, तो उसे कैसे पहचाने और उसके बचाव के लिए क्या करें किसान भाई बहन?
1: जो कटवा पिल्लू है, इसको कजरा कीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले भूरे रंग का होता है और इसका शरीर बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। इसे जो है, ये मक्का के अलावा अन्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूँ, गोभी के जो छोटे पौधे रहते हैं नर्सरी में, उनको भी वो जमीन की सतह से वो काट देते हैं या पत्तियों को भी खा जाते हैं। और इसके जो पिल्लू होते हैं, जो लार्वा कहा जाता है, वो दिन के समय में मिट्टी के ढेलों में या जो दरार हैं उसमें छिपके रहते हैं, और रात के समय या जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकलकर फिर पौधों को काटकर खाते हैं। ये खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिरा देते हैं, यानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इस कीट से बचाव हेतु खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे इसके पिल्लू मर जाते हैं। और जब इसका प्रकोप कम हो तो सिंचाई करने से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और खेत में लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए, जो लाइट में इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसके जो लाइट ट्रैप हैं उसके नीचे पानी भर के रख देने से उस पानी में सारे वो कीट गिर भी जाते हैं और जिससे कि वो मर जाते हैं। इस तरह से इसका ये एक जो लाइट ट्रैप है वो प्रबंध करता है इस कीट का। और अगर ये जो रासायनिक कीट में, इसका सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, जिनके क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशिका 3 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% मिक्सचर कीटनाशिका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 g प्रति 5 L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें सफ़ेद ग्रव कीट के बारे में बताइए।
1: सफ़ेद ग्रव कीट, इसे अंग्रेजी में वाइट ग्रव भी कहते हैं, और इसका जो वयस्क है वो बिटल व्रिंग होता है, भौरा जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, और ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, और जो इसके वयस्क हैं वो तो ऊपर पत्तियों को काट कर खाते हैं। और इन अंडों से जब जो मिट्टी में अंडे देते हैं तो इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं वो पौधों की जड़ों को खाते हैं, और इनका आकार जो होता है वो अंग्रेजी का सी जैसा मुड़ा हुआ होता है, सिर इसका भूरा रंग का होता है। और इस कीट के प्रबंधन हेतु जो इसके वयस्क कीट हैं, जो ऊपर में पत्तियों पर रहते हैं, काट कर खाते हैं, छेद बनाकर पत्तियों पर खाते हैं, उनको हाथ से या जाल जो नेट होता है नेट, उससे पकड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए। बीज बुआई के पहले जो क्लोरपाइरीफॉस से इसकी बीजोपचार भी करना चाहिए, और मिट्टी में भी क्लोरपाइरीफॉस 2% डस्ट फॉर्म में जो क्लोरपाइरीफॉस है 2% का, उसका 25 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और खरी फसल में जब इसका प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्सचर का 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसके छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, मैम फॉल आर्मी कीट की क्या पहचान होती है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
1: फॉल आर्मी वर्म कीट जो है, इसका वयस्क मौत होता है, यानी पतंगा होता है, और नर मौत जो इसका होता है उसका अगला पंख जो होता है मटमैले पीले रंग का धब्बे लिए होता है, और जो मादा मौत है उसके उसका जो अगला पंख है वो फीके धब्बे रंग का होता है, यानी थोड़ा ये डल कलर का होता है मादा, और नर थोड़ा ब्राइट कलर में होता है। पिछले पंख दोनों के ही उजले रंग के होते हैं, और मादा मौत जो होती है वो मक्का के पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती हैं और इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं उन पिल्लू के शरीर पर, पहले तो ये कलर बता दूं कि ये जो पिल्लू है वो पीले रंग का होता है और ये इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं। जो तना छेदक होता है उसके शरीर पर चार धारियां होती हैं और इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं और सिर पर उल्टे वाई आकार का निशान भी होता है। इसका जो उदर भाग होता है, पिल्लू का जो उदर भाग होता है अंतिम भाग, उस पर चार धब्बे होते हैं और वो धब्बे वर्गाकार में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान है और ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि खेत में कुछ भी नहीं है और अचानक से एक दो दिन के अंदर में पूरे खेत का सफाया कर देता है, क्योंकि ये फॉल आर्मवर्म सबसे पहले 2019 में देखा गया था और अब ये जो है 2020-21 में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो पूरे फैल गया था। अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो अगर ये कीट आ जाए तो इसके बचाव के लिए जो है, और ये जो है ना गाभा को अंदर से भी काट कर खाता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने काट कर खा रखा है। और इसके बचाव के लिए जब ये चूंकि ग्रुप में रहता है इसलिए इसको, और इसके पिल्लू शुरू में बहुत छोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर भी दिख जाते हैं, तो पत्ती सहित तोड़कर इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बुआई के 15-20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोप ट्रैप फ्रूजी पर्दा ल्यूर जो आता है उसको लगाना चाहिए इसमें, और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और फिर भी 3% अगर क्षति दिखाई दे शुरू में तो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जैसे निम्बिसिडी नीमाजल का 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि 5% क्षति दिखाई दे तो गाभा में बालू और राख का 1:1 ratio, मतलब आधा बालू आधा राख मिला करके गाभा में देने से जो है ये कीट मर जाता है, क्योंकि ये कीट रात में बाहर निकलता है जब, और जब बालू और राख गाभा में दिया जाता है तो उसकी बॉडी में घर्षण से उसके जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। इसके बावजूद भी अगर क्षति हो दिखाई दे तो रासायनिक कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 gram प्रति 5 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी और अधिक अगर क्षति दिखाई दे और पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो बालू और राख का जो गाभा में देते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है और पौधे बड़े हो जाते हैं, तब थायामिथेक्सम 12.6% और प्लस लैम्बडा साहेलोथ्रिन 9.5% ये मिक्सचर है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, कभी कभी मक्का के फसलों में लाही भी लग जाते हैं, तो लाही की क्या पहचान होती है और प्रबंधन कैसे करें?
1: तो ये लाही जो है इसको मेचा भी कहते हैं, माहू भी बोलते हैं, और ये हरे काले रंग का होता है और कभी कभी ये खरीफ में भी दिख जाता है, सितंबर माह में कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ऐसे तो रबी मक्का पर भी दिखाई देता है और फरवरी माह में, और ये जो लाही होते हैं वो पत्तियों से, इसके वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे ऊपर की पत्ती सूखना शुरू हो कर देते हैं और पौधे बीमार जैसे लगते हैं। और लाही कीट के प्रबंधन हेतु जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, यानी जो येलो स्टिकी ट्रैप है या तो कोई जो डब्बा है उसको पीला से पेंट कर उस पर ग्रीस लगा कर और डब्बे को एक

0: प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: और अब आप हमें को बोरर के बारे में बताइए कि ये किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें।
0: ये को बोरर जब भुट्टा बनने लगता है तब ये हानि पहुंचाता है और ये बहुभक्षी कीट है, यानी ये बहुत से फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। और जब मक्का में भुट्टा लगने लगता है तो ये जो है इसको मक्का को हानि पहुंचाता है। और इस कीट का जो पिल्लू होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है। इस कीट का वयस्क जो होता है वो भी पतंगा होता है और पीले भूरे रंग का होता है। ये पतंगा जो है वो हल्का अंधेरा जब होने लगता है या सूर्यास्त के बाद तभी वो दिखाई देता है, और फिर रात में भी पूरे रात जो है ये उड़ता रहता है फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर वो जब भुट्टा है उसके ऊपर भी अंडे दे देता है जिससे पिल्लू निकलकर भुट्टे के अंदर घुस जाते हैं और भुट्टे को फिर खाकर बर्बाद कर देते हैं। और इसका प्रकोप नवंबर से अप्रैल माह तक बहुत ही अधिक रहता है। तो कॉप बोरर कीट का प्रबंधन के लिए प्रोफेरोमेन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसका 2 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए, या कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का 3 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। एक और बायोपेस्टिसाइड जो स्पिनोसाइड, इसका भी छिड़काव करना चाहिए। 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हर एक कीट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, अगर किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मक्का के फसलों को बहुत कम नुकसान होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा जी। 90.8 एफएम ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है। चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पौध तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
0: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं? सर,
4: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं। एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं। पिटूनिया लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें 100 से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सुटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
0: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
4: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी करें, जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं। तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वेराइटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
0: सर, अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है, प्रमाणिक है, वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है, उसका किस्म जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है, और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खासकर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी सर। सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
4: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, बहुत छोटे मतलब 1000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए, उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाई वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे, इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल, वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है वो सीड को सोइंग करना ऊपर से, फिर हल्का सा पर्थ फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर, इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया, मेनली मीडिया जो है आप सोयल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
0: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए, मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है, और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
0: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
4: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर, और दूसरा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा, फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
0: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
4: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहां आपको लगाना है, या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहां लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में लगा सकते हैं।
0: जी सर।
4: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाएं तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
0: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
4: हाँ, इसमें ये है जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है, या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं, तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं, तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
0: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
4: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ना तो इसमें जल्दी करना है, और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा, और अगर ज़्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है। उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है, उसको ध्यान रखना है। यही मेन इसमें देखने की चीज़ है।
0: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे, या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: उन्नत कृषि
6: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
7: जी
6: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
7: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
6: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
4: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे, मेन हम देखना है कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
4: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
6: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
4: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
4: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
7: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम
मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज उन्नत कृषि में हमारा विषय है मसूर में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। आप दलहनी फसलों पर शोध कर रही हैं और किसानों को व्यवहारिक तकनीकें उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा। उमा जैसे कि मसूर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो न केवल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। यदि सही तकनीकों को अपनाया जाए तो किसान भाई अपनी पैदावार और आय दोनों को बढ़ा सकते हैं। मसूर की खेती सामान्यतः तीन पद्धतियाँ इसमें प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग विधि जिसमें बीजों को खेत में छिड़क कर बो दिया जाता है। यह सरल और कम लागत वाली विधि है परंतु बीज समान गहराई पर नहीं गिरते, पौधा संख्या असंतुलित रहता है इसमें और खरपतवार नियंत्रण काफ़ी कठिन होता है तथा उपज अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसके बाद जो आता है वो है शून्य जुताई जिसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं जिसमें बिना जुताई के मशीन द्वारा सीधी कतार वृद्ध बुआई की जाती है। इससे मिट्टी की नमी व संरचना सुरक्षित रहती है, समय व लागत की बचत भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में समान गहराई पर बुआई होने से अंकुरण व उत्पादन बेहतर होता है। हालांकि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी पर निर्भरता बढ़ सकती है तो अंततः हम वैज्ञानिक खेती जिसे हम सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते हैं जिसमें कि उन्नत किस्में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार, उचित दूरी पर कतार वृद्ध बुआई, समय पर सिंचाई, खरपतवार व कीट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे पौधों की संतुलित वृद्धि, अधिक फलियां, उच्च उपज तथा बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होता है। इसलिए अधिक उत्पादन और लाभ की दृष्टिकोण से मसूर की वैज्ञानिक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: मैम जैसे कि आपने बताया कि मसूर की जो खेती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है तो अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मसूर की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक खेती से हम अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से खेत का चयन करेंगे और तैयारी कैसी करनी चाहिए।
1: देखिए मसूर दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है लेकिन हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। खरीफ फसल या धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पाटा लगाएं, खेत समतल और नमी युक्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
0: और मैम बुआई का सही समय क्या होता है?
1: बुआई का सही समय जैसे असिंचित क्षेत्रों में बुआई का जो सही समय है वो है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक और सिंचित क्षेत्रों में बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है और देर से बुआई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए सही समय पर बुआई ज़रूरी है।
0: मैम सही समय के साथ उन्नत किस्म भी बहुत ज़रूरी होता है तो कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिसे किसानों को अपनाना चाहिए?
1: छोटे बीज वाली किस्में जैसे पूसा अगेती मसूर जिसे हम L4717 के नाम से भी जानते हैं और IPL 316 और Hull 57। अब बड़े बीज वाली किस्में जैसे IPL 220 ये सारी किस्में रोगरोधी हैं और अधिक उत्पादन भी देती हैं।
0: तो किसान भाई बहन बीज की क्या मात्रा ले और किस विधि से बुआई करें?
1: देखिए छोटे बीज वाली जो किस्में हैं इसमें जो बीज मात्रा है या बीज दर है वो होना चाहिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अगर बड़े बीज वाली किस्में हैं तो उसमें जो बीज दर होना चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, और अगर विलंबित बुआई हो रही है तो उसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें, और बीज गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: मैम, कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, तो मसूर में बीजोपचार कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: मसूर में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है तथा फसल को प्रारंभिक अवस्था में मृदा एवं बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले बीजों का रासायनिक उपचार करना चाहिए जिसमें थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या साफ जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है जिसे हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करते हैं। ध्यान रखें कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग अकेले ना करें, केवल अनुशंसित मिश्रण का ही उपयोग करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाकर जैविक उपचार करें, जिससे राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज के दर से, और इसमें हम PSB कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बोलते हैं, समान मात्रा में प्रयोग करें, जिससे PSB यूज़ करने से इससे ये मदद मिलती है जिससे फॉस्फेट पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। इन उपायों से उकटा रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव मिल सकता है और बेहतर अंकुरण प्राप्त होता है, मजबूत पौध स्थापना तथा अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
0: मैम, किसान भाई बहनों के मन में एक और सवाल होता है, एक और परेशानी होती है कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, तो आप ये बताइए।
1: इसके लिए हम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, साथ ही 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और अगर सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं, और जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 10 किलोग्राम बोरेक्स मिक्स करके दे सकते हैं।
0: और सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: मसूर प्रायः ही असिंचित क्षेत्रों में होती है, बुआई से पहले हल्की सिंचाई देना लाभकारी है। नमी की कमी होने पर 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई करें, अधिक सिंचाई या जल भराव से फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: मैम, फसल के साथ अक्सर खरपतवार उगाते हैं, तो मसूर के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: इसके लिए समय वृद्ध निराई गुड़ाई और रसायन प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण संभव है। प्रमुख जो इसमें खरपतवार हैं वो हैं मोथा, दूब, बथुआ, मीसिया, वन प्याजी। इसके लिए पेंडीमेथिलीन 30% EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के अगले दिन 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बुआई के बाद 50 दिन तक खेत खरपतवार मुक्त रखें, और हाथ से निराई गुड़ाई भी उपयोगी है।
0: और मैम, किसान भाई बहन मसूर के फसल में रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं?
1: इसमें जो मुख्यतः रोग हैं जैसे रतुआ रोग, उकटा रोग और शुष्क मूल विगलन, तो इसके लिए रतुआ रोग के लिए जो प्रबंधन है कर सकते हैं वो है मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करें, और उकटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें, और शुष्क मूल विगलन के लिए समय पर बुआई और उचित नमी खेतों में रहना लाभकारी हो सकता है।
0: मैम, और भी कोई अन्य तकनीक जो किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
1: जैसे फसल चक्र अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसूर में मोस्टली तीसी या अलसी या अन्य फसलों के साथ मिलाकर बौना रोग प्रबंधन में ये बहुत सहायता मिल सकती है, और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे खेत में अविघटित कार्बनिक पदार्थ ना छोड़ें, और जब फलियां पक जाएं तभी भूरे रंग की हो जाएं तभी कटाई करें।
0: तो ये कुछ चीज़ें अपनाकर किसान भाई बहन अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन और तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आप समय पर बुआई करते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और खाद का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो मसूर के पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि आप पा सकते हैं। तो ये केवल न आपकी आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखता है। मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए बने रहें। हम हैं क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा

0: मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है। यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें, जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GPS तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के जमाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे। और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पपोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
15: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
16: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
15: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
16: आपकी सेहत की बातें,
15: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
16: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
15: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
16: वो कहाँ पर?
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
16: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
15: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य मध्य से ही बीज बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जिसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें, और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण परीक्षण प्रयोगशाला वहां पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व तो देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फास्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, मतलब पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इन सब का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत जरूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं। इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फास्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फास्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिकल इनिशिएशन, उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए। लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा, जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूं, धान के बाद गेहूं करते हैं, वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है। तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में, सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं, और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
10: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें है किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफ़ी बढ़ा है, और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इन रसायनों के कारण होता है। यहाँ से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं, या यहां तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफी मात्रा आ जाती है, काफी अंश आ जाता है, और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियां, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार न होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है वह

0: का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि न पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है। कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं। उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
1: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
0: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए कि यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है, वैश्विक बाजार। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए, यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता, मेरे हाथों से इस जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओ। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों, आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार

0: फसलों की बात करें, उसमें दलहनी फसलों की हम बात करें, तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं?
1: बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए जो जैविक खेती की बात करते हैं, फसल चक्र की बात यदि करें तो उसमें दलहनी फसल यदि आप उत्पादित करते हैं अपने फसल चक्र में, तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता स्वतः ही बढ़ती जाती है। और दलहनी फसल हम चूंकि वो बैलेंस का नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के कारण ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते हैं, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है, लेकिन ये पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यहां यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं,

0: प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूप में करें, साथ ही साथ जो जैविक खाद है, जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
1: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई, तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए, ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं, तो हाँ एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजो स्पाइरलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फॉस्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फॉस्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, यह सब सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके, जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करें हम। जैसे देखिए, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया, उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया, राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए, और ठंडे हाथ, मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया, उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहां पर एक और है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और पीएसबी का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए, फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे, उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें? तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, और उसके पहले आपको पीएसबी का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सॉल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हरे के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब, लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें क्या कहते हैं, या तो कंद उपचारित करते हैं या आप उसका पिचड़ा उपचारित करते हैं, तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंद का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंद को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आप निकाल करके 1.5 घंटा बाहर में रखिए, फिर छाया में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपका बायोफर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए, और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए। अब 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखें, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 किलो आपको कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 किलो आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए, और उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए, और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए। ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें, और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10-15 दिन पर, 5-10 दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए,

0: 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया। उसमें है क्या, जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया। अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएसवी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार। लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए, वो सबसे बढ़िया है
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रवि फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाजार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

से 0.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई

होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम साबेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोर में, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच बच बच बच, एक प्राणी की जान बच बच बच। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद।
10: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
11: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है, तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें।

0: अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो

0: मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20 गुना 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का, और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों, एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है, उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं, जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है, तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
1: देखिए, इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के

0: की खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं, लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
1: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ है।
0: हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य चार स्तंभ है। एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद, जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा। दूसरी बात, सहफसली खेती की जाती है। सहफसली इसमें जो खेती की जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं, वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है, वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं। तो एक यदि हमने धान फसल लगाया, उसी

0: अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा। साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए, जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वो उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
0: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं, एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे और जो मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन, इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा, तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप में कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इस का प्रयोग किया था, नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूपेण जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देश

0: विश्वासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं, और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है, तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
10: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, तो ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
10: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों और भाइयों, आप जानते होंगे जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वह फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपने अपना ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य ऊर्जा को लेकर, सूर्य का प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी पोषक जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है, अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है
5: जी।
10: और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है, नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारे अनुवांशिक गुण है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपने जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी एंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
5: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
10: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है, मैंने जैसे बताया आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे, तो क्या है मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्र को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं ठीक है उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी जैसे मैंने बताया जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइक इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व तो जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्वों का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे, तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फॉस्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फॉस्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जो उनके अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
11: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
10: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए, ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें, तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तात्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशिष्ट पर्टिकुलर जगह की जो है पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे, उसकी कंपैरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदी मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लाइक किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में, हमारे वर्षा के पानी में घुलकर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पाँचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कृषि तकनीक आप उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्व की उपलब्धता को मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा, तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें। कोई भी हमारा मौसम है, हमारा सीजन हो, और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं। हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पर जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा डालने से चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहे हैं। तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगे, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे हमें उच्च आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको उर्वरक जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना। कभी कभी होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज़्यादा खाते तो आपको भी ज़्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे शरीर स्वास्थ्य पर क्या उसका हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज़्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधों को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूं, पीएच। आप जानते हैं पीएच हम करते हैं, जैसा आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा हो जाता है, तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
11: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
10: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण

नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का आप पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों एवं बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेगा, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियाँ जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करते हैं ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियाँ के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण वो उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं अगर गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रह्मासी है आप ईयर होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प, आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है कवर क्रॉप है, ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मरसी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंध उससे वे फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और का फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं, अगर जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आप जैसे यूरिया करते हैं जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को आप बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं, जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाने से क्या होता है उसके जो हमारा जड़ होता है ना उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर डाल रहे हो, 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को वहाँ तक
उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहां पर आपको उतनी डालना ज्यादा उतना ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है।

0: इसे आप फसल चक्र का जरूर अपनाएं, और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का ही दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें। और यही है इसके लिए, और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपके फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक खाद हमारे से, जैविक खाद है हमारे, जैविक उर्वरक जो हैं वो, आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा, माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है उसको, जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो इसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात वाला मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट से क्या करता है, ये फास्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए, और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने डीएपी का नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है, और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मील, आपने नाम सुना होगा, बोन मील में भी जानने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको भी क्या करता है एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए, तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है, ये खाद डाल रहे हैं, तो ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गोबर खाद में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रीटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद, जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है, जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से, इनके लीफ से, इनके ट्यूक से, इनके फली से क्या करना है, केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में, ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मीन्स कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें, जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी, अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी, तो कि इसमें हमें क्या होता है, जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है। तो उसमें हमें क्या, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है, तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है, और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक, जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है, उसका फोलियर स्प्रे करते हैं। मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोल कर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत, जैविक प्रबंधन करें। अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं, तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है, वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को, उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
3: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात करते तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
5: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं, या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या BQ, एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और खास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेजी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में खास करके जो बीमारियां हैं HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलबढ़वा जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो 3 साल तक के उम्र के बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से HSBQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
3: जी।
5: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठैल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस, या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
3: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
5: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे, और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं इनके, इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते या जो काफी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गांव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज़ की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गांव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहाँ पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहाँ पर, वहाँ हम लोग फीड ब्लॉक भी देके और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए, जहाँ टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें 7
0: से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
8: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
12: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
10: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
13: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
10: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
14: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
10: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
15: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉ

0: डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि

0: या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में

0: आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तब बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं, और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल।

0: आपको ये कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने ये कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पे जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूँ और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहाँ बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो, इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है, लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए, तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर, अपनी ढपली, अपना राग करके ढोलक बजाते रहते और गाना गाते रहते हैं। तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है? सोचो। बिल्कुल सही, हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं, वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है। है, एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और बादलों के बीच में एक जैसी है। तो तैयार है आप सब कविता की वे पंक्तियां सुनने के लिए? ठीक है, तो सुनिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यानी कि आप सारे बच्चे जिस तरह से शैतानियां करते हैं, बादल भी वैसे ही शैतानी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो शैतानी करते हैं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बादल क्यों शैतानी करते होंगे और बादल क्या शैतानी करते होंगे? तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल हैं कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर हैं, और बादलों की अम्मा उनके पीछे पीछे पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़े चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ है तो कभी उड़कर वहां चले गए। अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ? तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा, अपना घर खोज लेते हैं। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस यही बादल शैतानी करते हैं और अम्मा उनके पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ती फिरती हैं। फिर क्या करती हैं अम्मा? अम्मा फिर थक हार कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हें खीर खानी है तो खाओ और नहीं खानी तो मत खाओ। लेकिन बादल अब समझ जाते हैं कि अम्मा नाराज हो गई हैं। लेकिन ये अम्मा का झूठ मूठ का गुस्सा है। हमारी माँ भी तो ऐसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है हमें, ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं और आराम से भोजन कर लें। तो जब अम्मा थक हार कर बैठ जाती हैं, तो फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है। तो अम्मा कहती है, खीर ये रखी है और अब तुम खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है? हाँ, बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमाचौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना, तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्त तो मैं लगाती हूँ। बच्चों, ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए। जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है, बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा। तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी। और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप टप टप टप टप टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे। ठीक है, कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता। और आपको इतना मौका मिलता है कि आप अपनी जेब पलटकर सारा पानी बाहर कर दें, नहीं मिलेगा। आप आजमा के देखिएगा, लेकिन जेब अपनी हो, किसी और की नहीं हो, वरना उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो आप भी ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे नहीं, उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पानी को जमा कर लूँ, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूँ उसे, ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूं, या आइस क्यूब जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूं, तो बताइए ये जो बर्फ है ये पानी में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी, थोड़ी देर के लिए तो टिकेगी, हालांकि वो टप टप टप टप टप टप गिरती चली जाएगी पानी की बूंदे, क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और वह जो बर्फ है वह पानी के रूप में बहने लगती है। तो मेरी जेब में तो पानी ठहर सकता है, लेकिन किस तरह से, ठोस रूप में, यानी कि जो बर्फ है बर्फ के तौर पर हमारी जेब में ये पानी ठहर सकता है थोड़ी देर के लिए, सही, लेकिन बाद में शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, ये पूरी की पूरी बर्फ पानी बन जाती है और टप टप टप टप टप टप शुरू हो जाता है। तो आप भी ये करके देखिएगा कि पानी, हमने नल से एक गिलास में पानी भरा, थोड़ा सा पानी भरा, अपनी जेब में डाला, तो पानी कहाँ गया, पानी सर से नीचे चला गया। अब हम अपनी जेब में बर्फ डालेंगे और आप देखिए कि बर्फ हमारी जेब में ठहरती है या नहीं। अगर यही बर्फ बादल ने अपनी जेब में डाली होती और उसके पापा इससे कहते कि जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, पापा जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, अब क्या होगा, ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है, ओले। ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी तो ये किस रूप में नीचे आई, ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई, जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे, और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था, लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप टप टप टप टप टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं? आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है, तो बच्चों क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है, अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है ये भी ठीक है, इसमें हवा सनसन चलती है ये भी ठीक है, इसमें बिजली चमकती है वेरी गुड, और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चलें सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया, हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया। अब बिजली के साथ क्या है, बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने, बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है और पानी के बरसने की आवाज क्या है, झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी। तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आए, झमझम बरस रहा है पानी और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है, नानी। अब हमें करना क्या है, हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी। तो क्या हो सकता है, अब कैसे आएगी नानी। है ना मजेदार कविता, तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता, अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और अब बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब लोग किसान नाम सुनते ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में गरीब एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान अगर बिहार की बात करें तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादा अधिकतर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधाराएं ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है, और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री, आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
11: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
10: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे, जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूं पर आश्रित है, तो कैसे कैसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं है तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
11: तो सर अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
10: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं। आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम, उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही। जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
11: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
10: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
11: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाए।
10: जी जी हाँ।
11: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
10: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार, केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी, आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
11: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
10: देखिए एक एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं बाद बोलते हैं खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है। और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
11: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
10: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिलके एक जगह मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए, तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
11: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सारी

0: तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है, पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
1: तो सर, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
0: देखिए, बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया, वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा, हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियाँ, सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ, उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी मैम,
1: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर

0: करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस

0: और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बावेस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है।

सकता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में. दोस्तों, यूं तो मक्का की जो फसल होती है वो काफी फायदा देती है हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन अगर कीट लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. किस प्रकार से आप कीटों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कीटों से मक्का के फसल को बचा सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं विस्तार से डॉक्टर किरण कुमारी से. मैम है कीट विज्ञान विभाग से, मैम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैम. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल को कौन कौन से कीट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं.
1: जी, मक्का फसल जो है वो हमारे बिहार के कंडीशन में सालों भर लगाए जाते हैं, यानी खरीफ, रबी और गर्मा तीनों मौसम में जो मक्का है वो उगाया जाता है. और लगभग तीनों सीजन में मक्का को कीट जो है वो खाकर उसको हानि पहुंचाते हैं. और इन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में मक्का का तना छेदक कीट, कटुआ पिल्लू, सफेद ग्रब, लाही, फॉल आर्मी वर्म एवं कॉब बोरर कीट हैं.
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो आप हमें सबसे पहले बताइए मैम कि तना छेदक कीट, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है.
1: मक्का का तना छेदक कीट जो है इसका वयस्क पतंग, जो पतंगा जिसको कहते हैं, जैसे वो मौत भी कहते हैं इसको, जैसे बटरफ्लाई होता है दिन में उड़ता है तो वो रात में उड़ता है, तो ये वयस्क जो है इसका पंख का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है. ये पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर पिल्लू जो भूरे रंग के होते हैं वो निकलते हैं. और ये जो पिल्लू हैं उनको लार्वा भी कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं. और इन पिल्लुओं के शरीर के ऊपर चार धारियां होती हैं और इनका सिर जो होता है, हेड, वो काला होता है. ये जो लार्वा या पिल्लू हैं ये पत्तियों के गाभा को खाते हैं. और पहले तो जो पत्तियां हैं उनको, चूंकि इनका जो जो लार्वा है, शिशु हैं पिल्लू, इनके जो शुरुआत में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ये पत्तियां चूंकि गाभा में ही मुड़कर रहते हैं और इन पर ये पिन, इनका माउथ छोटा होता है इसलिए पिन के बराबर छेद करके खाते हैं. और जब ये पत्तियां थोड़ा बाहर आती हैं तो ये पिन बराबर छेद जो हमारे वो दिखते हैं वो समानांतर रूप में दिखते हैं. फिर जब यही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो छेद थोड़े बड़े भी दिखते हैं और वो एकदम समानांतर में रहते हैं क्योंकि वो गाभा के अंदर ही काट कर उसको खाते हैं. फिर ये लार्वा जो है पूरे अंदर तने में प्रवेश करके नीचे तने तक, जो जमीन का लेवल वहाँ तक भी चले जाते हैं और इस तरह से तनों को खाते हैं. और जिससे कि बीच वाली जो फुनगी होती है वो सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है. चूंकि ये बीच में, बीच की पत्ती सूखती है, बीच में खाते ही हैं वो, तो इसलिए वो जो है उसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी कहा जाता है.
0: जी मैम,
1: इसके कीट जो ये जो है इसके बचाव के लिए जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटनी के बाद, खेतों के सारे जो भी अवशेष ठूंठ होते हैं उनको हटा देना चाहिए क्योंकि इसी में इसके जो पिल्लू होते हैं या एक पीपा होता है जिससे कि फिर वयस्क निकलते हैं, वो ये दोनों अवस्था लार्वा पीपा ये उन ठूठों में ही पाए जाते हैं और जमीन के अंदर वो घुस के रहते हैं. मई और जून के महीने में इसके खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए जिससे कि ये जो मिट्टी में पड़े हुए इसके लार्वा हैं, पिल्लू हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो जाते हैं और या तो चिड़ियां भी खा जाती हैं. और इसके नियंत्रण के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए. और जब फिर भी अधिक प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीट में फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या डेल्टा मेथ्रिन 1% का प्लस ट्राइजोफॉस 35 EC का मिक्सचर, ये कीटनाशी है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, ये तो बात हो गई तना छेदक कीट के बारे में। मैम, कटवा पिल्लू भी लगते हैं मक्का के फसलों में, तो उसे कैसे पहचाने और उसके बचाव के लिए क्या करें किसान भाई बहन?
1: जो कटवा पिल्लू है, इसको कजरा कीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले भूरे रंग का होता है और इसका शरीर बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। इसे जो है, ये मक्का के अलावा अन्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूं, गोभी के जो छोटे पौधे रहते हैं नर्सरी में, उनको भी वो जमीन की सतह से वो काट देते हैं या पत्तियों को भी खा जाते हैं। और इसके जो पिल्लू होते हैं, जो लार्वा कहा जाता है, वो दिन के समय में मिट्टी के ढेलों में या जो दरार हैं उसमें छिपके रहते हैं, और रात के समय या जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकलकर फिर पौधों को काटकर खाते हैं। ये खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिरा देते हैं, यानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इस कीट से बचाव हेतु खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे इसके पिल्लू मर जाते हैं। और जब इसका प्रकोप कम हो तो सिंचाई करने से ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और खेत में लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए, जो लाइट में इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसके जो लाइट ट्रैप हैं उसके नीचे पानी भर के रख देने से उस पानी में सारे वो कीट गिर भी जाते हैं, और जिससे कि वो मर जाते हैं। इस तरह से इसका ये एक जो लाइट ट्रैप है वो प्रबंध करता है इस कीट का। और अगर ये जो रासायनिक कीट में, इसका सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, क्योंकि क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशी का 3 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% मिक्सचर कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 g प्रति 5 L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमें सफ़ेद ग्रव कीट के बारे में बताइए।
1: सफ़ेद ग्रव कीट, इसे अंग्रेजी में वाइट ग्रव भी कहते हैं, और इसका जो वयस्क है वो बिटल व्रिंग होता है, भौरा जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, और ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, और जो इसके वयस्क हैं वो तो ऊपर पत्तियों को काट कर खाते हैं। और इन अंडों से जब जो मिट्टी में अंडे देते हैं तो इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं वो पौधों की जड़ों को खाते हैं, और इनका आकार जो होता है वो अंग्रेजी का सी जैसा मुड़ा हुआ होता है, सिर इसका भूरा रंग का होता है। और इस कीट के प्रबंधन हेतु जो इसके वयस्क कीट हैं, जो ऊपर में पत्तियों पर रहते हैं, काट कर खाते हैं, छेद बनाकर पत्तियों पर खाते हैं, उनको हाथ से या जाल जो नेट होता है, नेट उससे पकड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए। बीज बुआई के पहले जो क्लोरपाइरीफॉस से इसकी बीज उपचार भी करना चाहिए, और मिट्टी में भी क्लोरपाइरीफॉस 2% डस्ट फॉर्म में जो क्लोरपाइरीफॉस है 2% का, उसका 25 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और खरी फसल में जब इसका प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्सचर का 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसके छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम। मैम, फॉल आर्मी कीट की क्या पहचान होती है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
1: फॉल आर्मी वर्म कीट जो है, इसका वयस्क मौत होता है, यानी पतंगा होता है, और नर मौत जो इसका होता है उसका अगला पंख जो होता है मटमैले पीले रंग का धब्बे लिए होता है, और जो मादा मौत है उसके उसका जो अगला पंख है वो फीके धब्बे रंग का होता है, यानी थोड़ा ये डल कलर का होता है मादा, और नर थोड़ा ब्राइट कलर में होता है। पिछले पंख दोनों के ही उजले रंग के होते हैं, और मादा मौत जो होती है वो मक्का के पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती हैं और इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं उन पिल्लू के शरीर पर, पहले तो ये कलर बता दूं कि ये जो पिल्लू है वो पीले रंग का होता है और ये इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं। जो तना छेदक होता है उसके शरीर पर चार धारियां होती हैं और इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं और सिर पर उल्टे वाई आकार का निशान भी होता है। इसका जो उदर भाग होता है, पिल्लू का जो उदर भाग होता है अंतिम भाग, उस पर चार धब्बे होते हैं और वो धब्बे वर्गाकार में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान है और ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि खेत में कुछ भी नहीं है और अचानक से एक दो दिन के अंदर में पूरे खेत का सफाया कर देता है, क्योंकि ये फॉल आर्मीवर्म किट सबसे पहले 2019 में देखा गया था और अब ये जो है 2020-21 में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो पूरे फैल गया था। अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो अगर ये किट आ जाए तो इसके बचाव के लिए जो है, और ये जो है ना गाभा को अंदर से भी काट कर खाता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने काट कर खा रखा है। और इसके बचाव के लिए जब ये चूंकि ग्रुप में रहता है इसलिए इसको, और इसके पिल्लू शुरू में बहुत छोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर भी दिख जाते हैं, तो पत्ती सहित तोड़कर इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बुआई के 15-20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोप ट्रैप फ्रूजी पर्दा ल्यूर जो आता है उसको लगाना चाहिए इसमें, और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और फिर भी 3% अगर क्षति दिखाई दे शुरू में तो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जैसे निम्बिसिडी नीमाजल का 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि 5% क्षति दिखाई दे तो गाभा में बालू और राख का 1:1 ratio, मतलब आधा बालू आधा राख मिलाकर के गाभा में देने से जो है ये कीट मर जाता है, क्योंकि ये कीट रात में बाहर निकलता है जब, और जब बालू और राख गाभा में दिया जाता है तो उसके बॉडी में घर्षण से उसके जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। इसके बावजूद भी अगर क्षति हो दिखाई दे तो रासायनिक कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 gram प्रति 5 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी और अधिक अगर क्षति दिखाई दे और पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो बालू और राख का जो गाभा में देते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है और पौधे बड़े हो जाते हैं, तब थायामिथेक्सम 12.6% और प्लस लैम्बडा साहेलोथ्रिन 9.5% ये मिक्सचर है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, कभी कभी मक्का के फसलों में लाही भी लग जाते हैं, तो लाही की क्या पहचान होती है और प्रबंधन कैसे करें?
1: तो ये लाही जो है इसको मेचा भी कहते हैं, माहू भी बोलते हैं, और ये हरे काले रंग का होता है और कभी कभी ये खरीफ में भी दिख जाता है, सितंबर माह में कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ऐसे तो रबी मक्का पर भी दिखाई देता है और फरवरी माह में, और ये जो लाही होते हैं वो पत्तियों से, इसके वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे ऊपर की पत्ती सूखना शुरू हो कर देते हैं और पौधे बीमार जैसे लगते हैं। और लाही कीट के प्रबंधन हेतु जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, यानी जो येलो स्टिकी ट्रैप है या तो कोई जो डब्बा है उसको पीला से पेंट कर उस पर ग्रीस लगा कर और डब्बे को एक छड़ी के सहारे उल्टा लटका दें, नहीं तो वो जो कार्टून होता है उसको पीले रंग से रंग के उस पर ग्रीस लगा दें और वो तख्ती जैसा वो रहेगा और उसको लकड़ी के सहारे खेतों में लगा दें, जिससे कि ये लाही कीट जो उसमें मूवमेंट होता है तो उस पर जाके सट जाते हैं और मर जाते हैं। फिर बायोपेस्टिसाइड में निम्बी चूर्ण और 5% घोल का 2 छिड़काव करना चाहिए, और अधिक प्रकोप हो जाए तो कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कीटनाशी का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: और अब आप हमें को बोरर के बारे में बताइए कि ये किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें।
1: ये को बोरर जब भुट्टा बनने लगता है तब ये हानि पहुंचाता है और ये बहुभक्षी कीट है, यानी ये बहुत से फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। और जब मक्का में भुट्टा लगने लगता है तो ये जो है इसको मक्का को हानि पहुंचाता है। और इस कीट का जो पिल्लू होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है। इस कीट का वयस्क जो होता है वो भी पतंगा होता है और पीले भूरे रंग का होता है। ये पतंगा जो है वो हल्का अंधेरा जब होने लगता है या सूर्यास्त के बाद तभी वो दिखाई देता है, और फिर रात में भी पूरे रात जो है ये उड़ता रहता है फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर वो जब भुट्टा है उसके ऊपर भी अंडे दे देता है जिससे पिल्लू निकलकर भुट्टे के अंदर घुस जाते हैं और भुट्टे को फिर खाकर बर्बाद कर देते हैं। और इसका प्रकोप नवंबर से अप्रैल माह तक बहुत ही अधिक रहता है। तो कॉप बोरर कीट का प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसका 2 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए, या कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का 3 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। एक और बायोपेस्टिसाइड जो स्पिनोसाइड, इसका भी छिड़काव करना चाहिए। 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हर एक कीट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, अगर किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मक्का के फसलों को बहुत कम नुकसान होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद उमा जी। 90.8 FM ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा, उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है। चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पोत तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
5: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं सर?
9: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं, एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं। पिटूनिया लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें 100 से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सुटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
5: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
9: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी करेंगे, जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं, तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वेराइटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
5: सर अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है, प्रमाणिक है, वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है उसका किस्म, जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है, और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खासकर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
5: जी सर, सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
9: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, बहुत छोटे मतलब 1,000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए, उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाई वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे, इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रोट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है वो सीड को सोइंग करना ऊपर से, फिर हल्का सा पर्थ फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर, इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया मेनली मीडिया जो है आप सोयल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
5: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए, मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है, और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
5: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
9: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर। और दूसरा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
5: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
9: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहां आपको लगाना है या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहां लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में

0: लगा सकते हैं
1: जी सर।
0: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाए तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
1: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
0: हाँ, इसमें ये है, जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं, तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
1: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
0: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ना तो इसमें जल्दी करना है और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा और अगर ज़्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है। उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है, उसको ध्यान रखना है, यही मेन इसमें देखने की चीज़ है।
1: जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर।

0: की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
0: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की, और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
2: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10

0: बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की

संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3-7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350-400 ग्राम बीज और 20-25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40-60 किलोग्राम पोटाश और 10-15 किलोग्राम बोरेक्स और 1-2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800-1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40-50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300-350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7-10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10-15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20-25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा
अल्सा डेलीसियस, सीओ 7 अलका सूर्या और रेड लेडी। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हमारा विषय है मसूर में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। आप दलहनी फसलों पर शोध कर रही हैं और किसानों को व्यवहारिक तकनीकें उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा। उमा, जैसे कि मसूर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो न केवल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। यदि सही तकनीकों को अपनाया जाए तो किसान भाई अपनी पैदावार और आय दोनों को बढ़ा सकते हैं। मसूर की खेती सामान्यतः तीन पद्धतियाँ इसमें प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग विधि, जिसमें बीजों को खेत में छिड़क कर बो दिया जाता है। यह सरल और कम लागत वाली विधि है, परंतु बीज समान गहराई पर नहीं गिरते, पौधा संख्या असंतुलित रहता है इसमें और खरपतवार नियंत्रण काफ़ी कठिन होता है तथा उपज अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसके बाद जो आता है वो है शून्य जुताई, जिसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं, जिसमें बिना जुताई के मशीन द्वारा सीधी कतार वृद्ध बुआई की जाती है। इससे मिट्टी की नमी व संरचना सुरक्षित रहती है, समय व लागत की बचत भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में समान गहराई पर बुआई होने से अंकुरण व उत्पादन बेहतर होता है। हालांकि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी पर निर्भरता बढ़ सकती है, तो अंततः हम वैज्ञानिक खेती जिसे हम सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते हैं, जिसमें कि उन्नत किस्में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार, उचित दूरी पर कतार वृद्ध बुआई, समय पर सिंचाई, खरपतवार व कीट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे पौधों की संतुलित वृद्धि, अधिक फलियां, उच्च उपज तथा बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होता है। इसलिए अधिक उत्पादन और लाभ की दृष्टिकोण से मसूर की वैज्ञानिक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: मैम, जैसे कि आपने बताया कि मसूर की जो खेती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मसूर की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक खेती से हम अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से खेत का चयन करेंगे और तैयारी कैसी करनी चाहिए।
1: देखिए, मसूर दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। खरीफ फसल या धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पाटा लगाएं, खेत समतल और नमी युक्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
0: और मैम, बुआई का सही समय क्या होता है?
1: बुआई का सही समय, जैसे असिंचित क्षेत्रों में बुआई का जो सही समय है वो है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और सिंचित क्षेत्रों में बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। और देर से बुआई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सही समय पर बुआई जरूरी है।
0: मैम, सही समय के साथ उन्नत किस्म भी बहुत जरूरी होता है, तो कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिसे किसानों को अपनाना चाहिए?
1: छोटे बीज वाली किस्में जैसे पूसा अगेती मसूर, जिसे हम L4717 के नाम से भी जानते हैं, और IPL 316 और Hull 57, अब बड़े बीज वाली किस्में जैसे IPL 220, ये सारी किस्में रोगरोधी हैं और अधिक उत्पादन भी देती हैं।
0: तो किसान भाई बहन बीज की क्या मात्रा लें और किस विधि से बुआई करें?
1: देखिए, छोटे बीज वाली जो किस्में हैं इसमें जो बीज मात्रा है या बीज दर है वो होना चाहिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर बड़े बीज वाली किस्में हैं तो उसमें जो बीज दर होना चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और अगर विलंबित बुआई हो रही है तो उसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और बीज गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: मैम, कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, तो मसूर में बीजोपचार कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: मसूर में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है तथा फसल को प्रारंभिक अवस्था में मृदा एवं बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले बीजों का रासायनिक उपचार करना चाहिए जिसमें थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या साफ जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है जिसे हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करते हैं। ध्यान रखें कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग अकेले ना करें, केवल अनुशंसित मिश्रण का ही उपयोग करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाकर जैविक उपचार करें जिससे राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज के दर से, और इसमें हम पीएसबी कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बोलते हैं, समान मात्रा में प्रयोग करें जिससे पीएसबी यूज़ करने से इससे ये मदद मिलती है जिससे फॉस्फेट पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। इन उपायों से उकटा रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव मिल सकता है और बेहतर अंकुरण प्राप्त होता है, मजबूत पौध स्थापना तथा अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
0: मैम, किसान भाई बहनों के मन में एक और सवाल होता है, एक और परेशानी होती है कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, तो आप ये बताइए।
1: इसके लिए हम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, साथ ही 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और अगर सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं, और जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 10 किलोग्राम बोरेक्स मिक्स करके दे सकते हैं।
0: और सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: मसूर प्रायः ही असिंचित क्षेत्रों में होती है, बुआई से पहले हल्की सिंचाई देना लाभकारी है। नमी की कमी होने पर 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई करें, अधिक सिंचाई या जल भराव से फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: मैम, फसल के साथ अक्सर खरपतवार उगाते हैं, तो मसूर के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: इसके लिए समय वृद्ध निराई गुड़ाई और रसायन प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण संभव है। प्रमुख जो इसमें खरपतवार हैं वो हैं मोथा, दूब, बथुआ, मीसिया, वन प्याजी। इसके लिए पेंडीमेथिलीन 30% ईसी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के अगले दिन 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बुआई के बाद 50 दिन तक खेत खरपतवार मुक्त रखें और हाथ से निराई गुड़ाई भी उपयोगी है।
0: और मैम, किसान भाई बहन मसूर के फसल में रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं?
1: इसमें जो मुख्यतः रोग हैं जैसे रतुआ रोग, उकटा रोग और शुष्क मूल विगलन, तो इसके लिए रतुआ रोग के लिए जो प्रबंधन है कर सकते हैं वो है मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करें, और उकटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें, और शुष्क मूल विगलन के लिए समय पर बुआई और उचित नमी खेतों में रहना लाभकारी हो सकता है।
0: मैम, और भी कोई अन्य तकनीक जो किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
1: जैसे फसल चक्र अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसूर में मोस्टली तीसी या अलसी या अन्य फसलों के साथ मिलाकर बौना रोग प्रबंधन में ये बहुत सहायक है, सहायता मिल सकती है। और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे खेत में अविघटित कार्बनिक पदार्थ ना छोड़ें, और जब फलियां पक जाएं तभी भूरे रंग की हो जाएं तभी कटाई करें।
0: तो ये कुछ चीज़ें अपनाकर किसान भाई बहन अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन और तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आप समय पर बुआई करते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और खाद का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो मसूर की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि आप पा सकते हैं। तो ये केवल न आपकी आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखता है। मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए बने रहें। हम हैं क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य है कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज़ करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
15: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
16: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
15: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
16: आपकी सेहत की बातें,
15: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
16: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
15: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
16: वो कहाँ पर?
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
16: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा अल्सा डेलीसियस, सीओ 7 अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियाँ होती है, ऑटो इम्यून बीमारियाँ जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरी

ना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है
तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचे,

0: हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है, और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, पोटाश या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण परीक्षण प्रयोगशाला वहां पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व कम है और कौन सा पोषक तत्व उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा जरूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा जरूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जरूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं, तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टिलरिंग होता है, टिलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले, बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, माने पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इन सब का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत जरूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व तो है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फॉस्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिकल इनिशिएशन, उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा, जहाँ पर धान के बाद हुईट, धान के बाद गेहूं, धान के बाद गेहूं करते हैं, वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है। तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में, सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
10: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद
10: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
11: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें है किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफ़ी बढ़ा है। और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इन रसायनों के कारण होता है। यहाँ से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज़्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं या यहाँ तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफ़ी मात्रा आ जाती है, काफ़ी अंश आ जाता है। और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियाँ, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार न होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वह यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विष विहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे। हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
10: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
11: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है, वैश्विक बाजार। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
10: बिल्कुल।
11: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता, मेरे हाथों से इन जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओ। इसीलिए किसान भाइयों आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक टाटा बिरला भी यदि कहता है कि हम जैविक उत्पाद खा रहे हैं तो उनको कोई कहता है कि जैविक उत्पाद है तब, लेकिन आप तो पैदा करते हैं, आप तो जानते हैं कि यह जैविक है या नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए 10 कट्ठा, अरे कितना आप धान खाते हैं, चावल खाते होंगे 2-3 क्विंटल खाते होंगे, गेहूं 3-4 क्विंटल खाते होंगे, दलहन तिलहन 1-1 क्विंटल खाते होंगे, आलू 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल की जरूरत होती होगी। आप यदि 10 कट्ठा जमीन यदि आप चिन्हित कर लीजिए और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं उसी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और कम से कम आपके बच्चे तो बीमार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप अपने लिए ये प्रण बना लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको अपने परिवार में जैविक उत्पाद ही प्रयोग करना है, जैविक उत्पाद ही खाएंगे
10: जी। अगर डॉक्टर साहब अगर रवि फसलों की बात करें, उसमें दलहनी फसलों की हम बात करें, तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं?
11: बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए जो जैविक खेती की बात करते हैं, फसल चक्र की बात यदि करें तो उसमें दलहनी फसल यदि आप उत्पादित करते हैं अपने फसल चक्र में, तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता स्वतः ही बढ़ती जाती है। और दलहनी फसल हम चूंकि वह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नत्रजन का स्थिरीकरण करता है, और नत्रजन का स्थिरीकरण करने के कारण यह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते हैं, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है लेकिन यह पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यहां यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए, जो हमारा विश्वविद्यालय बनाता है वो इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट बनाता है।
10: जी जी।
11: उसमें फास्फोरस भी ज्यादा है, उसमें गंधक भी ज्यादा है, और मैं आपको बताऊं सिर्फ गंधक वाला बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10-15% तो दलहन और तिलहन का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते खास करके इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट, तो मुश्किल से 2.5 से लेकर 5 टन प्रति हेक्टेयर का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ यदि आपने अजोला का प्रयोग भी किया है तो इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में रहता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें। अब ये जो है जैव उर्वरक, बर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ कुछ बायोडायनेमिक खाद भी आया है, जैसे कि पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूप में करें, साथ ही साथ जो जैविक खाद है जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
10: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
11: देखिए ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहां एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फास्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फास्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, यह सब सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके, जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करें हम? जैसे देखिए यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया, राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए, और ठंडे हाथ मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर एक और है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और पीएसबी का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें? तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, और उसके पहले आपको पीएसबी का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सॉल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हर एक के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब, लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें क्या कहते हैं, या तो कंद उपचारित करते हैं या आप उसका पिछड़ा उपचारित करते हैं, तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंद का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंद को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आप निकाल करके 1/2 घंटा बाहर में रखिए, फिर छाए में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपका बायो फर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए, और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए, अपना 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखें, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 किलो आपको कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 किलो आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए, और उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, और गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए, और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए, ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें, और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10-15 दिन पर दस दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए, और 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया, उसमें है क्या जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया, अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएसबी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार, लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए वो सबसे बढ़िया है
10: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रबी फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाज़ार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
12: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरे फ्लेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वही मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमदा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम साबेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोर में, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने

0: जैसे उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
1: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
0: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया।
1: जी।
0: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
1: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियाँ, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
1: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
0: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद।
10: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
11: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
10: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
11: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें। तथा गले की रस्सी लगी ना छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
10: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
11: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
10: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है, उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं। जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप

0: और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, या बीजामृत हुआ, या दशपर्णी अर्क हुआ, या नीमास्त्र हुआ, या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी अर्क या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र, ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है? ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं, लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
1: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं।
0: हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य चार स्तंभ है। एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद, जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा। दूसरी बात, सहफसली खेती की जाती है। सहफसली इसमें जो खेती की जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है, वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं। तो एक यदि हमने धान फसल लगाया, उसी के साथ साथ सहफसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सहफसली का इसमें ज्यादा बल होता है, सहफसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है, 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है, और 50% सॉलिड पार्ट होता है, यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं, और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है, मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए, जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं, तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वो उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
0: देखिए, आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं। एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन,

0: पहला है सजीव आच्छादन और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं, तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जो मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा, और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन। इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो वो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा, तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए, और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप में कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इसका का प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी, जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूपेण जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें, और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सुरक्षित है। टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं, और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है, तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
10: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, तो ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
10: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों और भाइयों, आप जानते होंगे, जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वह फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपने अपना ऊर्जा जो ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं, इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जिनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है, अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं, ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है
5: जी।
10: और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपना जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी इंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
5: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
10: जी जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं ठीक है उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी जैसे मैंने बताया, जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हम

0: हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे। तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ, इन नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये है आपको नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फॉस्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फॉस्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जो उनके आनुवंशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फॉस्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है, क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशिष्ट पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्रकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व तो प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदी मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा, ये आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लाइक किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में, हमारे वर्षा के पानी में घुलकर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पाँचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कृषि तकनीक आप उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्व की उपलब्धता को, मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है, वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे एक जाकर ये हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है, हमारा सीजन हो, और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें, हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं। हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पे जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से, चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहे हैं। तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगी, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होगी, जिससे हमें उच्च आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको उर्वरक, जितना उनको पोषक तत्व की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना। कभी कभी होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज़्यादा खाते तो आपको भी ज़्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पर क्या उसका हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज़्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण है, जैसे हो सकता है छठा कारण मैं बोलूं, pH। आप जानते हैं pH हम करते हैं, जैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका pH का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर pH का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा हो जाता है, तो आप देखे होंगे pH का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव

0: पोषक तत्व है जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मट्टियों की, इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता तो पौधे के फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें, उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को, मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास हम मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियां जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया, और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ, बहुत प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है, ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियां के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं अगर गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है, तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना, कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है, नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रह्मासी है आप ईयर होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प, आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये भ्रमरसी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना वातावरण में, जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन, उससे वे फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और उसका फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रेजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद से, जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन तिलहन पौधे का उगाएं। दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर डाल रहे हो, 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को, बहुत कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए फसल चक्र का जरूर अपनाएं और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का ही, दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें, और यही है इसके लिए। और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपके फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक खाद हमारे से, जैविक खाद है हमारे, जैविक उर्वरक जो हैं वो, आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा, माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है उसको, जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो उसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही हो, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डोरमेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात बोला, मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा, और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट से क्या करता है, ये फॉस्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए और फॉस्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने DAP का नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है। और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मील में भी डालने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको भी क्या करता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, इसमें ऐसा नहीं है कि जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है, ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गोबर खाद में, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत

0: प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है, जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से, इनके ट्यूब से, इनके फली से क्या करना है, केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में। ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों और भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी, अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया है उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें, उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी। तो उस केस में हमें क्या होता है, जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है, तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक, जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोल कर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत, जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे

0: हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20 गुना 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: 62.1 Learning outcome is combines two situations by creatively adding story elements. C2.1 and 2.2 Learning outcome or LO is understands flow of the story and compares it with friends' stories. Competency 2.2 Learning outcome understands the concept of storyboard. Competency 2.2 Learning outcome creatively changes order of situations to get a new story. Competency 2.2 Learning outcome works on building the scene together and not just one's ideas. Overall participation in class. All the learning outcomes to be assessed by teacher and self. Teacher's observations to be filled in the space given below. Other comments also to be mentioned in the given space. Chapter 7 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Amarjit Sarkar. Production assistant, Vineet Kumar Sharma. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India.
2: Namaste class. टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है। इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: एक जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को, उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
3: जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात कर, तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
5: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं, या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या BQ एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और ख़ास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेज़ी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में ख़ास करके जो बीमारियाँ हैं, HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलभड़वा, जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है, और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो 3 साल तक के उम्र के बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से, HSBQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
3: जी।
5: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठैल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफ़ी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें, और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
3: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं, और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
5: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे, और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं, इनके इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते, या जो काफी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गांव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज़ की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गांव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहाँ पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहाँ हम लोग फीड ब्लॉक भी दे के और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए जहाँ टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
13: दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद
13: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
14: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
14: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
14: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
13: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
15: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
16: जी
15: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
16: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
15: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तब बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल।

आपको ये कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं? ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पे जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूँ और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहाँ बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है, लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए, तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर, अपनी ढपली अपना राग करके ढोलक बजाते रहते और गाना गाते रहते हैं। तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है? सोचो। बिल्कुल सही, हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं, वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है। है, एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और

शैतानी करते होंगे। तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल हैं कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर हैं और बादलों की अम्मा उनके पीछे पीछे पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ी चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ हैं तो कभी उड़कर वहाँ चले गए। अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ, तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा अपना घर खोज लेते हैं, उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस यही बादल शैतानी करते हैं और अम्मा उनके पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ती फिरती हैं। फिर क्या करती हैं अम्मा, अम्मा फिर थक हार कर बैठ जाती हैं और कहती हैं ये लो तुम्हें खीर खानी है तो खाओ और नहीं खानी तो मत खाओ। लेकिन बादल अब समझ जाते हैं कि अम्मा नाराज हो गई हैं, लेकिन ये अम्मा का झूठ मूठ का गुस्सा है, हमारी माँ भी तो ऐसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है हमें ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं और आराम से भोजन कर लें। तो जब अम्मा थक हार कर बैठ जाती हैं तो फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है। तो अम्मा कहती है खीर ये रखी है और अब तो खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है, हाँ बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमाचौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी, पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्तों में लगाती हूँ। बच्चों ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई, एक और बार सुनते हैं, ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है, बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा, तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी, और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप टप टप टप टप टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे, ठीक है। कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता, और आपको इतना मौका मिलता है कि आप अपनी जेब पलटकर सारा पानी बाहर कर दें, नहीं मिलेगा

0: अब आजमा के देखेगा, लेकिन जेब अपनी हो, किसी और की नहीं हो, वरना उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो आप भी ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे नहीं, उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पानी को जमा कर लूँ, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूँ उसे, ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूँ या आइस क्यूब, जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूँ, तो बताइए ये जो बर्फ है ये पानी में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी, थोड़ी देर के लिए तो टिकेगी, हालांकि वो टप टप टप टप टप टप गिरती चली जाएगी पानी की बूंदें, क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और वह जो बर्फ है वह पानी के रूप में बहने लगती है। तो मेरी जेब में तो पानी ठहर सकता है, लेकिन किस तरह से? ठोस रूप में, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ के तौर पर हमारी जेब में ये पानी ठहर सकता है थोड़ी देर के लिए, सही, लेकिन बाद में शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, ये पूरी की पूरी बर्फ पानी बन जाती है और टप टप टप टप टप टप शुरू हो जाता है। तो आप भी ये करके देखिएगा कि पानी, हमने नल से एक गिलास में पानी भरा, थोड़ा सा पानी भरा, अपनी जेब में डाला, तो पानी कहाँ गया? पानी सर से नीचे चला गया। अब हम अपनी जेब में बर्फ डालेंगे और आप देखिए कि बर्फ हमारी जेब में ठहरती है या नहीं। अगर यही बर्फ बादल ने अपनी जेब में डाली होती और उसके पापा उससे कहते कि जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, पापा जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, अब क्या होगा? ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है? ओले। ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी तो ये किस रूप में नीचे आई? ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई, जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे, और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था, लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप टप टप टप टप टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है, और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं? आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है, तो बच्चों क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है? अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है? इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है, ये भी ठीक है, इसमें हवा सनसन चलती है, ये भी ठीक है, इसमें बिजली चमकती है, वेरी गुड, और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चले सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया? हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया, अब बिजली के साथ क्या है, बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने, बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है और पानी के बरसने की आवाज क्या है, झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी। तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आए, झमझम बरस रहा है पानी और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है, नानी। अब हमें करना क्या है, हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी। तो क्या हो सकता है, अब कैसे आएगी नानी, है ना मजेदार कविता। तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता, अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। Thank you.

0: नजरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं।

0: स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएनएम पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें।

0: बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें, तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पर आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए, तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधाराएं ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं। उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है। लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी मिल जाती है, लोन, अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा सकते, अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पर हम लोगों ने इस पर अध्ययन करके, और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं, इस पर काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री, आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
0: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
1: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में

0: क्षेत्रफल में धान लगाते हैं और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं अब वही धान गेहूँ पर आश्रित है तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
1: तो सर अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
0: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते कोई भी काम उसको बोलते व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
1: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है, तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है, फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है, तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे, आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है, तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
1: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
0: जी जी हाँ।
1: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
0: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
1: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
0: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है, जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है। और छोटे खेत में आप एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं, या तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
1: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
0: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती। क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो, जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है, और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
1: जी तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
0: जी देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उस उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
1: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
0: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियाँ सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
1: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी ही, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोए। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोए। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में. दोस्तों, यूं तो मक्का की जो फसल होती है वो काफी फायदा देती है हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन अगर कीट लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. किस प्रकार से आप कीटों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कीटों से मक्का के फसल को बचा सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं विस्तार से डॉक्टर किरण कुमारी से. मैम है कीट विज्ञान विभाग से, मैम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैम. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल को कौन कौन से कीट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं.
1: जी, मक्का फसल जो है वो हमारे बिहार के कंडीशन में सालों भर लगाए जाते हैं, यानी खरीफ, रबी और गर्मा, तीनों मौसम में जो मक्का है वो उगाया जाता है. और लगभग तीनों सीजन में मक्का को कीट जो है वो खाकर उसको हानि पहुंचाते हैं. और इन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में मक्का का तना छेदक कीट, कटुआ पिल्लू, सफेद ग्रब, लाही, फॉल आर्मी वर्म एवं कॉब बोरर कीट हैं.
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो आप हमें सबसे पहले बताइए मैम कि तना छेदक कीट, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है.
1: मक्का का तना छेदक कीट जो है, इसका वयस्क पतंग, जो पतंगा जिसको कहते हैं, जैसे वो मौत भी कहते हैं इसको, जैसे बटरफ्लाई होता है दिन में उड़ता है तो वो रात में उड़ता है, तो ये वयस्क जो है इसका पंख का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है. ये पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर पिल्लू जो भूरे रंग के होते हैं वो निकलते हैं. और ये जो पिल्लू हैं उनको लार्वा भी कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं. और इन पिल्लुओं के शरीर के ऊपर चार धारियां होती हैं और इनका सिर जो होता है, हेड, वो काला होता है. ये जो लार्वा या पिल्लू हैं ये पत्तियों के गाभा को खाते हैं. और पहले तो जो पत्तियां हैं उनको, चूंकि इनका जो जो लार्वा है, शिशु हैं पिल्लू, इनके जो शुरुआत में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ये पत्तियां चूंकि गाभा में ही मुड़कर रहते हैं और इन पर ये पिन, इनका माउथ छोटा होता है इसलिए पिन के बराबर छेद करके खाते हैं. और जब ये पत्तियां थोड़ा बाहर आती हैं तो ये पिन बराबर छेद जो हमारे वो दिखते हैं वो समानांतर रूप में दिखते हैं. फिर जब यही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो छेद थोड़े बड़े भी दिखते हैं और वो एकदम समानांतर में रहते हैं क्योंकि वो गाभा के अंदर ही काट कर उसको खाते हैं. फिर ये लार्वा जो है पूरे अंदर तने में प्रवेश करके नीचे तने तक, जो जमीन का लेवल, वहाँ तक भी चले जाते हैं और इस तरह से तनों को खाते हैं. और जिससे कि बीच वाली जो फुनगी होती है वो सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है. चूंकि ये बीच में, बीच की पत्ती सूखती है, बीच में खाते ही हैं वो, तो इसलिए वो जो है उसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी कहा जाता है.
0: जी मैम,
1: इसके कीट जो, ये जो है इसके बचाव के लिए जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटनी के बाद, खेतों के सारे जो भी अवशेष ठूंठ होते हैं उनको हटा देना चाहिए क्योंकि इसी में इसके जो पिल्लू होते हैं या एक पीपा होता है जिससे कि फिर वयस्क निकलते हैं, वो ये दोनों अवस्था, लार्वा पीपा, ये उन ठूठों में ही पाए जाते हैं और जमीन के अंदर वो घुस के रहते हैं. मई और जून के महीने में इसके खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए जिससे कि ये जो मिट्टी में पड़े हुए इसके लार्वा हैं, पिल्लू हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो जाते हैं और या तो चिड़ियां भी खा जाती हैं. और इसके नियंत्रण के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए. और जब फिर भी अधिक प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीट में फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या डेल्टा मेथ्रिन 1% का प्लस ट्राइजोफॉस 35 EC का मिक्सचर, ये कीटनाशी है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, ये तो बात हो गई तना छेदक कीट के बारे में। मैम, कटवा पिल्लू भी लगते हैं मक्का के फसलों में, तो उसे कैसे पहचाने और उसके बचाव के लिए क्या करें किसान भाई बहन?
1: जो कटवा पिल्लू है, इसको कजरा कीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले भूरे रंग का होता है और इसका शरीर बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। इसे जो है, ये मक्का के अलावा अन्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूं, गोभी के जो छोटे पौधे रहते हैं नर्सरी में, उनको भी वो जमीन की सतह से वो काट देते हैं, या पत्तियों को भी खा जाते हैं। और इसके जो पिल्लू होते हैं, जो लार्वा कहा जाता है, वो दिन के समय में मिट्टी के ढेलों में या जो दरार हैं उसमें छिपके रहते हैं, और रात के समय या जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकलकर फिर पौधों को काटकर खाते हैं। ये खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिरा देते हैं, यानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इस कीट से बचाव हेतु खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे इसके पिल्लू मर जाते हैं। और जब इसका प्रकोप कम हो तो इस सिंचाई करने से ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और खेत में लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए, जो लाइट में इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसके जो लाइट ट्रैप हैं उसके नीचे पानी भर के रख देने से उस पानी में सारे वो कीट गिर भी जाते हैं, और जिससे कि वो मर जाते हैं। इस तरह से इसका ये एक जो लाइट ट्रैप है वो प्रबंध करता है इस कीट का। और अगर ये जो रासायनिक कीट में, इसका सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, क्योंकि क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशी का 3 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% मिक्सचर कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 g प्रति 5 L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें सफ़ेद ग्रव कीट के बारे में बताइए।
1: सफ़ेद ग्रव कीट, इसे अंग्रेजी में वाइट ग्रव भी कहते हैं, और इसका जो वयस्क है वो बिटल व्रिंग होता है, भौरा जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, और ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, और जो इसके वयस्क हैं वो तो ऊपर पत्तियों को काट कर खाते हैं। और इन अंडों से जब जो मिट्टी में अंडे देते हैं, तो इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं वो पौधों की जड़ों को खाते हैं। और इनका आकार जो होता है वो अंग्रेजी का सी जैसा मुड़ा हुआ होता है, सिर इसका भूरा रंग का होता है। और इस कीट के प्रबंधन हेतु जो इसके वयस्क कीट हैं, जो ऊपर में पत्तियों पर रहते हैं, काट कर खाते हैं, छेद बनाकर पत्तियों पर खाते हैं, उनको हाथ से या जाल जो नेट होता है, नेट उससे पकड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए। बीज बुआई के पहले जो क्लोरपाइरीफॉस से इसकी बीज उपचार भी करना चाहिए, और मिट्टी में भी क्लोरपाइरीफॉस 2% डस्ट फॉर्म में जो क्लोरपाइरीफॉस है 2% का, उसका 25 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और खड़ी फसल में जब इसका प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्सचर का 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसके छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, मैम फॉल आर्मी कीट की क्या पहचान होती है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
1: फॉल आर्मी वर्म कीट जो है, इसका वयस्क मौत होता है, यानी पतंगा होता है, और नर मौत जो इसका होता है उसका अगला पंख जो होता है मटमैले पीले रंग का धब्बे लिए होता है, और जो मादा मौत है उसके उसका जो अगला पंख है वो फीके धब्बे रंग का होता है, यानी थोड़ा ये डल कलर का होता है मादा, और नर थोड़ा ब्राइट कलर में होता है। पिछले पंख दोनों के ही उजले रंग के होते हैं, और मादा मौत जो होती है वो मक्का के पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती हैं और इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं उन पिल्लू के शरीर पर, पहले तो ये कलर बता दूं कि ये जो पिल्लू है वो पीले रंग का होता है और ये इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं। जो तना छेदक होता है उसके शरीर पर चार धारियां होती हैं और इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं और सिर पर उल्टे वाई आकार का निशान भी होता है। इसका जो उदर भाग होता है, पिल्लू का जो उदर भाग होता है अंतिम भाग, उस पर चार धब्बे होते हैं और वो धब्बे वर्गाकार में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान है और ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि खेत में कुछ भी नहीं है और अचानक से एक दो दिन के अंदर में पूरे खेत का सफाया कर देता है, क्योंकि ये फॉल आर्मवर्म सबसे पहले 2019 में देखा गया था और अब ये जो है 2020-21 में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो पूरे फैल गया था। अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो अगर ये कीट आ जाए तो इसके बचाव के लिए जो है, और ये जो है ना गाभा को अंदर से भी काट कर खाता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने काट कर खा रखा है। और इसके बचाव के लिए जब ये चूंकि ग्रुप में रहता है इसलिए इसको, और इसके पिल्लू शुरू में बहुत छोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर भी दिख जाते हैं, तो पत्ती सहित तोड़कर इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बुआई के 15-20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोप्टेरा फ्रूजी पर्दा ल्यूर जो आता है उसको लगाना चाहिए इसमें, और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और फिर भी 3% अगर क्षति दिखाई दे शुरू में तो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जैसे निम्बिसिडी नीमाजल का 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि 5% क्षति दिखाई दे तो गाभा में बालू और राख का 1:1 ratio, मतलब आधा बालू आधा राख मिलाकर के गाभा में देने से जो है ये कीट मर जाता है, क्योंकि ये कीट रात में बाहर निकलता है जब, और जब बालू और राख गाभा में दिया जाता है तो उसके बॉडी में घर्षण से उसके जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। इसके बावजूद भी

0: जी मैम, कभी कभी मक्का के फसलों में लाही भी लग जाते हैं, तो लाही की क्या पहचान होती है और प्रबंधन कैसे करें?
1: तो ये लाही जो है, इसको मेचा भी कहते हैं, माहू भी बोलते हैं, और ये हरे काले रंग का होता है, और कभी कभी ये खरीफ में भी दिख जाता है, सितंबर माह में कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ऐसे तो रबी मक्का पर भी दिखाई देता है और फरवरी माह में, और ये जो लाही होते हैं वो पत्तियों से, इसके वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे ऊपर की पत्ती सूखना शुरू कर देते हैं और पौधे बीमार जैसे लगते हैं। और लाही कीट के प्रबंधन हेतु जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, यानी जो येलो स्टिकी ट्रैप है, या तो कोई जो डब्बा है उसको पीला से पेंट कर उस पर ग्रीस लगा कर और डब्बे को एक छड़ी के सहारे उल्टा लटका दें, नहीं तो वो जो कार्टून होता है उसको पीले रंग से रंग के उस पर ग्रीस लगा दें और वो तख्ती जैसा वो रहेगा, और उसको लकड़ी के सहारे खेतों में लगा दें, जिससे कि ये लाही कीट जो उसमें मूवमेंट होता है तो उस पर जाके सट जाते हैं और मर जाते हैं। फिर बायोपेस्टिसाइड में निम्बी चूर्ण और 5% घोल का 2 बार छिड़काव करना चाहिए, और अधिक प्रकोप हो जाए तो कीटनाशी में इमीडा क्लोप्रिट 17.8 SL कीटनाशी का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: और अब आप हमें को बोरर के बारे में बताइए कि ये किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें?
1: ये कॉब बोरर जब भुट्टा बनने लगता है तब ये हानि पहुंचाता है, और ये बहुभक्षी कीट है, यानी ये बहुत से फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। और जब मक्का में भुट्टा लगने लगता है तो ये जो है इसको मक्का को हानि पहुंचाता है। और इस कीट का जो पिल्लू होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है। इस कीट का वयस्क जो होता है वो भी पतंगा होता है और पीले भूरे रंग का होता है। ये पतंगा जो है वो हल्का अंधेरा जब होने लगता है या सूर्यास्त के बाद तभी वो दिखाई देता है, और फिर रात में भी पूरे रात जो है ये उड़ता रहता है फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर वो जब भुट्टा है उसके ऊपर भी अंडे दे देता है, जिससे पिल्लू निकलकर भुट्टे के अंदर घुस जाते हैं और भुट्टे को फिर खाकर बर्बाद कर देते हैं। और इसका प्रकोप नवम्बर से अप्रैल माह तक बहुत ही अधिक रहता है। तो कॉब बोरर कीट का प्रबंधन के लिए प्रोफेरोमेन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए, लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, और इसका 2 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए, या कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का 3 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। एक और बायोपेस्टिसाइड जो स्पिनोसाइड, इसका भी छिड़काव करना चाहिए, 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने हर एक कीट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए। अगर किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मक्का के फसलों को बहुत कम नुकसान होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो

0: बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद उमा जी। 90.8 FM ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है। चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पौध तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
10: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं सर?
11: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं, एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें हंड्रेड से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सूटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
10: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
11: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी करेंगे, जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं, तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वेराइटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
10: सर अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
11: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है प्रमाणिक है वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है उसका किस्म, जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है, और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खास कर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
10: जी सर, सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
11: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, बहुत छोटे मतलब 1000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए, उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाय वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे, इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे, उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है वो सीड को सोइंग करना, ऊपर से फिर हल्का सा पर्थ फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर, इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया मेनली मीडिया जो है आप सोइल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
10: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
11: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए, मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
10: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
11: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर। और दूसरा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
10: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
11: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहां आपको लगाना है या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहां लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में लगा सकते हैं।
10: जी सर,
11: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाए तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
10: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
11: हाँ, इसमें ये है जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
10: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
11: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ना तो इसमें जल्दी करना है और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा और अगर ज़्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है, उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है उसको ध्यान रखना है, यही मेन इसमें देखने की चीज़ है।
10: जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
12: उन्नत कृषि
13: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
14: जी
13: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
14: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
13: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
4: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
6: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
4: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
7: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन
गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बावस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हमारा विषय है मसूर में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। आप दलहनी फसलों पर शोध कर रही हैं और किसानों को व्यवहारिक तकनीकें उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा। उमा, जैसे कि मसूर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो न केवल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। यदि सही तकनीकों को अपनाया जाए तो किसान भाई अपनी पैदावार और आय दोनों को बढ़ा सकते हैं। मसूर की खेती सामान्यतः तीन पद्धतियाँ इसमें प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग विधि, जिसमें बीजों को खेत में छिड़क कर बो दिया जाता है। यह सरल और कम लागत वाली विधि है, परंतु बीज समान गहराई पर नहीं गिरते, पौधा संख्या असंतुलित रहता है इसमें और खरपतवार नियंत्रण काफ़ी कठिन होता है तथा उपज अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसके बाद जो आता है वो है शून्य जुताई, जिसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं, जिसमें बिना जुताई के मशीन द्वारा सीधी कतार वृद्ध बुआई की जाती है। इससे मिट्टी की नमी व संरचना सुरक्षित रहती है, समय व लागत की बचत भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में समान गहराई पर बुआई होने से अंकुरण व उत्पादन बेहतर होता है। हालांकि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी पर निर्भरता बढ़ सकती है, तो अंततः हम वैज्ञानिक खेती जिसे हम सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते हैं, जिसमें कि उन्नत किस्में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार, उचित दूरी पर कतार वृद्ध बुआई, समय पर सिंचाई, खरपतवार व कीट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे पौधों की संतुलित वृद्धि, अधिक फलियां, उच्च उपज तथा बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होता है। इसलिए अधिक उत्पादन और लाभ की दृष्टिकोण से मसूर की वैज्ञानिक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: मैम, जैसे कि आपने बताया कि मसूर की जो खेती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मसूर की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक खेती से हम अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से खेत का चयन करेंगे और तैयारी कैसी करनी चाहिए।
1: देखिए, मसूर दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। खरीफ फसल या धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पाटा लगाएं, खेत समतल और नमी युक्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
0: और मैम, बुआई का सही समय क्या होता है?
1: बुआई का सही समय, जैसे असिंचित क्षेत्रों में बुआई का जो सही समय है वो है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और सिंचित क्षेत्रों में बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। और देर से बुआई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सही समय पर बुआई ज़रूरी है।
0: मैम, सही समय के साथ उन्नत किस्म भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिसे किसानों को अपनाना चाहिए?
1: छोटे बीज वाली किस्में जैसे पूसा अगेती मसूर, जिसे हम L4717 के नाम से भी जानते हैं, और IPL 316 और Hull 57। अब बड़े बीज वाली किस्में जैसे IPL 220, ये सारी किस्में रोगरोधी हैं और अधिक उत्पादन भी देती हैं।
0: तो किसान भाई बहन बीज की क्या मात्रा लें और किस विधि से बुआई करें?
1: देखिए, छोटे बीज वाली जो किस्में हैं, इसमें जो बीज मात्रा है या बीज दर है वो होना चाहिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर बड़े बीज वाली किस्में हैं तो उसमें जो बीज दर होना चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, और अगर विलंबित बुआई हो रही है तो उसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें, और बीज गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: मैम, कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, तो मसूर में बीजोपचार कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: मसूर में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है तथा फसल को प्रारंभिक अवस्था में मृदा एवं बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले बीजों का रासायनिक उपचार करना चाहिए जिसमें थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या साफ जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है जिसे हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करते हैं। ध्यान रखें कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग अकेले ना करें, केवल अनुशंसित मिश्रण का ही उपयोग करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाकर जैविक उपचार करें, जिससे जैसे कि राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज के दर से, और इसमें हम PSB कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बोलते हैं, समान मात्रा में प्रयोग करें, जिससे PSB यूज़ करने से इससे ये मदद मिलती है जिससे फॉस्फेट पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। इन उपायों से उकटा रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव मिल सकता है और बेहतर अंकुरण प्राप्त होता है, मजबूत पौध स्थापना तथा अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
0: मैम, किसान भाई बहनों के मन में एक और सवाल होता है, एक और परेशानी होती है कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, तो आप ये बताइए।
1: इसके लिए हम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, साथ ही 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और अगर सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं, और जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 10 किलोग्राम बोरेक्स मिक्स करके दे सकते हैं।
0: और सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: मसूर प्रायः ही असिंचित क्षेत्रों में होती है, बुआई से पहले हल्की सिंचाई देना लाभकारी है। नमी की कमी होने पर 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई करें, अधिक सिंचाई या जल भराव से फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: मैम, फसल के साथ अक्सर खरपतवार उगाते हैं, तो मसूर के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: इसके लिए समय वृद्ध निराई गुड़ाई और रसायन प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण संभव है। प्रमुख जो इसमें खरपतवार हैं वो हैं मोथा, दूब, बथुआ, मीसिया, वन प्याजी। इसके लिए पेंडीमेथिलीन 30% EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के अगले दिन 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बुआई के बाद 50 दिन तक खेत खरपतवार मुक्त रखें, और हाथ से निराई गुड़ाई भी उपयोगी है।
0: और मैम, किसान भाई बहन मसूर के फसल में रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं?
1: इसमें जो मुख्यतः रोग हैं जैसे रतुआ रोग, उकटा रोग और शुष्क मूल विगलन, तो इसके लिए रतुआ रोग के लिए जो प्रबंधन है कर सकते हैं वो है मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करें, और उकटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें, और शुष्क मूल विगलन के लिए समय पर बुआई और उचित नमी खेतों में रहना लाभकारी हो सकता है।
0: मैम, और भी कोई अन्य तकनीक जो किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
1: जैसे फसल चक्र अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसूर में मोस्टली तीसी या अलसी या अन्य फसलों के साथ मिलाकर बौना रोग प्रबंधन में ये बहुत सहायता मिल सकती है, और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे खेत में अविघटित कार्बनिक पदार्थ ना छोड़ें, और जब फलियां पक जाएं तभी भूरे रंग की हो जाएं तभी कटाई करें।
0: तो ये कुछ चीज़ें अपनाकर किसान भाई बहन अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन और तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आप समय पर बुआई करते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और खाद का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो मसूर की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि आप पा सकते हैं। तो ये केवल न आपकी आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखता है। मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए बने रहें। हम हैं क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ।

0: आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ज़मीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
16: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकालें और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, सीओ 7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: लेडीज फर्स्ट।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जिसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें, और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमजोर होता है और आपका पौधा भी कमजोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहां पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व तो देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं, तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले, बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, मतलब पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए, और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है, और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत जरूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फॉस्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिकल इनिशिएशन, उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा, जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूं, धान के बाद गेहूं करते हैं, वहां पर जिंक की कमी महसूस होता है। तो जहां पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहां पर उसी फील्ड में यूज करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में, सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
10: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं, और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद
10: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
11: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें है किसी तरह के

0: कारण होता है।
1: यहां से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं, या यहां तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफी मात्रा आ जाती है, काफी अंश आ जाता है। और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियां, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार ना होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है, वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वह यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विष विहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे। हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
2: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
1: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है, वैश्विक बाजार। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी, जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता।

0: मेरे हाथों से इस जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जा। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों, आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक टाटा बिरला भी यदि कहता है कि हम जैविक उत्पाद खा रहे हैं तो उनको कोई कहता है कि जैविक उत्पाद है तब, लेकिन आप तो पैदा करते हैं, आप तो जानते हैं कि यह जैविक है या नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए 10 कट्ठा, अरे कितना आप धान खाते हैं, चावल खाते होंगे 2-3 क्विंटल खाते होंगे, गेहूं 3-4 क्विंटल खाते होंगे, दलहन तिलहन 1-1 क्विंटल खाते होंगे, आलू 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल की जरूरत होती होगी। आप यदि 10 कट्ठा जमीन यदि आप चिन्हित कर लीजिए और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं उसी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूपेण आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और कम से कम आपके बच्चे तो बीमार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप अपने लिए ये प्रण बना लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको अपने परिवार में जैविक उत्पाद ही प्रयोग करना है, जैविक उत्पाद ही खाएंगे
1: जी। अगर डॉक्टर साहब, अगर रवि फसलों की बात करें, उसमें दलहनी फसलों की हम बात करें, तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं?
0: बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए जो जैविक खेती की बात करते हैं, फसल चक्र की बात यदि करें तो उसमें दलहनी फसल यदि आप उत्पादित करते हैं अपने फसल चक्र में तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता स्वतः ही बढ़ती जाती है। और दलहनी फसल हम चूंकि वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नत्रजन का स्थिरीकरण करता है, और नत्रजन का स्थिरीकरण करने के कारण ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते हैं, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है लेकिन ये पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यहाँ यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए, जो हमारा विश्वविद्यालय बनाता है वो इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट बनाता है।
1: जी जी।
0: उसमें फास्फोरस भी ज्यादा है, उसमें गंधक भी ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ गंधक वाला बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10-15% तो दलहन और तिलहन का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं खास करके इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट, तो मुश्किल से 2.5 से लेकर 5 टन प्रति हेक्टेयर का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ यदि आपने अजोला का प्रयोग भी किया है तो इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें। अब ये जो है जैव उर्वरक, बर्मी कंपोस्ट और साथ ही साथ कुछ बायोडायनेमिक खाद भी आया है, जैसे कि पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूपेण करें। साथ ही साथ जो जैविक खाद है, जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
1: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं तो हाँ एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फास्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फास्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, यह सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसके इसका प्रयोग कैसे करें हम। जैसे देखिए, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया। राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए और ठंडे हाथ, मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहां पर एक और है। मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और PSB का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, उसके पहले आपको PSB का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सॉल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हर एक के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब। लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें क्या कहते हैं, या तो कंद उपचारित करते हैं या आप उसका पिचड़ा उपचारित करते हैं। तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंद का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंद को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप निकाल करके 1/2-1 घंटा बाहर में रखिए, फिर छाए में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपका बायोफर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए। अपन 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखें, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 किलो आपको कल्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा। तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 किलो आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए। अब उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए। ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10 दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए, और 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया। उसमें है क्या, जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया। अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे PSB करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायोफर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार। लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए, वो सबसे बढ़िया है
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रबी फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाज़ार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।
2: उन्नत
1: कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए, क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओ, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओ, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओ, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओ, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियाँ, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच बच बच बच, एक प्राणी की जान बच बच बच। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
10: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर

0: दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ओर ध्यान न देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं

0: उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20 गुना 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों, एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं, जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
1: देखिए, इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है, ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
0: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं।
1: हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य चार स्तंभ है, एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा, दूसरी बात सह फसली खेती की जाती है, सह फसली इसमें जो खेती की जाती है जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं, उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं, तो एक यदि हमने धान फसल लगाया उसी के साथ साथ सह फसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सह फसली का इसमें ज्यादा बल होता है, सह फसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है, और 50% सॉलिड पार्ट होता है, यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं, और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वह उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
1: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं, एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन, और तीसरा है काष्ट द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जब मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा। और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे। तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन। इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा। तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए। और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इसका का प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
0: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं, और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है, तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
10: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, तो ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
10: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों और भाइयों, आप जानते होंगे, जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वह फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपने अपना ऊर्जा जो ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य ऊर्जा को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जिनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी पोषक जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है वो अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है, नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपने जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी इंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
11: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
10: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है, मैंने जैसे बताया आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे। तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी। जैसे मैंने बताया जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइक इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व तो जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे, तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ, इन नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फास्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं, और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फास्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। जो उनके अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
11: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
10: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है, क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशेष पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचली वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे, उसकी कंपैरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदी मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लाइक किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में हमारे वर्षा के पानी में घुल कर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पांचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कृषि तकनीक आप उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है हमारा सीजन हो और अगर फसल की आप चयन करें, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पर जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दें। तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगी, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होगी जिससे हमें कुछ आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको उर्वरक जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है हम उतना ही खाते हैं ना, कभी कभी होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज़्यादा खाते तो आपको भी ज़्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है हमारे सर स्वास्थ्य पर, क्या उसका मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही

0: में प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है। अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज्यादा हो जाता है तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज्यादा होने से वहां पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उस मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में। और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है। और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जिस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का आप पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों और बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं उसको, उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते हैं सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेगा, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियाँ जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो तो उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइक आप देखे होंगे उसमें केचुआ, बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो क्या हमारे सब्जियाँ के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं अगर गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रह्मासी है, आप ईयर होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प, आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढैंचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मर्सी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन उससे हुए फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और इनका फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो

0: ये उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहां आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रेजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहां पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर डाल रहे हो, 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए फसल चक्र का जरूर अपनाएं और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें। और यही है इसके लिए, और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के जो भी आपके फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक उर्वरक जो हैं, वो आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है उसको जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो इसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात बोला, मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा, और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट से क्या करता है, ये फास्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए और फास्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने DAP का नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है, और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मिल, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मिल में भी जानने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको भी क्या करता है एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है, ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गोबर खाद में, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से इनके ट्यूब से इनके फली से क्या करना है केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में। ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों और भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया है उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी। तो उस केस में हमें क्या होता है, जैविक अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोल कर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को, उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
3: जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात कर, तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
5: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या BQ, एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और खास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेजी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में खास करके जो बीमारियां हैं, HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलबढ़वा, जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है, और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो 3 साल तक के उम्र के बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से, HSBQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
3: जी।
5: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठाइल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस, या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें, और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
3: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं, और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
5: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे, और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं इनके, इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते, या जो काफ़ी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गाँव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज़ की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गांव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहाँ पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहाँ पर, वहाँ हम लोग फीड ब्लॉक भी देके और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए, जहाँ टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
0: उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
13: दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद
13: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
14: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त

0: या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान

0: करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तक बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं, और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल।

0: आपको ये कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं? ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने ये कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पे जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूँ और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहाँ बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो, इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है, लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए, तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर, अपनी ढपली, अपना राग करके ढोलक बजाते रहते और गाना गाते रहते हैं। तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है? सोचो। बिल्कुल सही, हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं, वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है। है, एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और बादलों के बीच में एक जैसी है। तो तैयार हैं आप सब कविता की वे पंक्तियां सुनने के लिए? ठीक है, तो सुनिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यानी कि आप सारे बच्चे जिस तरह से शैतानियां करते हैं, बादल भी वैसे ही शैतानी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो शैतानी करते हैं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बादल क्यों शैतानी करते होंगे और बादल क्या शैतानी करते होंगे? तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल हैं कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर हैं, और बादलों की अम्मा उनके पीछे पीछे पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़े चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ हैं तो कभी उड़कर वहां चले गए। अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ? तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा, अपना घर खोज लेते हैं। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस यही बादल शैतानी करते हैं और अम्मा उनके पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ती फिरती हैं। फिर क्या करती हैं अम्मा? अम्मा फिर थक हार कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हें खीर खानी है तो खाओ और नहीं खानी तो मत खाओ। लेकिन बादल अब समझ जाते हैं कि अम्मा नाराज हो गई हैं। लेकिन ये अम्मा का झूठ मूठ का गुस्सा है। हमारी माँ भी तो ऐसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है हमें, ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं और आराम से भोजन कर लें। तो जब अम्मा थक हार कर बैठ जाती हैं, तो फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है। तो अम्मा कहती है, खीर ये रखी है और अब तुम खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है? हाँ, बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमाचौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना, तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्त तो मैं लगाती हूँ। बच्चों, ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए। जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है, बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा। तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी। और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप टप टप टप टप टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे। ठीक है, कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता। और आपको इतना मौका मिलता है कि आप अपनी जेब पलट कर सारा पानी बाहर कर दें, नहीं मिलेगा। आप आजमा के देखिएगा, लेकिन जेब अपनी हो, किसी और की नहीं हो, वरना उसका पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो आप भी ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे नहीं, उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पानी को जमा कर लूँ, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूँ उसे, ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूं या आइस क्यूब, जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूं, तो बताइए ये जो बर्फ है ये पानी में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी, थोड़ी देर के लिए तो टिकेगी, हालांकि वो टप टप टप टप टप टप गिरती चली जाएगी पानी की बूंदे, क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और वह जो बर्फ है वह पानी के रूप में बहने लगती है। तो मेरी जेब में तो पानी ठहर सकता है, लेकिन किस तरह से? ठोस रूप में, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ के तौर पर हमारी जेब में ये पानी ठहर सकता है थोड़ी देर के लिए, सही, लेकिन बाद में शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, ये पूरी की पूरी बर्फ पानी बन जाती है और टप टप टप टप टप टप शुरू हो जाता है। तो आप भी ये करके देखिएगा कि पानी, हमने नल से एक गिलास में पानी भरा, थोड़ा सा पानी भरा, अपनी जेब में डाला, तो पानी कहाँ गया? पानी सर से नीचे चला गया। अब हम अपनी जेब में बर्फ डालेंगे और आप देखिए कि बर्फ हमारी जेब में ठहरती है या नहीं। अगर यही बर्फ बादल ने अपनी जेब में डाली होती और उसके पापा उससे कहते कि जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, पापा जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए। जेब उलट दी उसने झटपट, अब क्या होगा? ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है? ओले। ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी तो ये किस रूप में नीचे आई? ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई, जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे, और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था, लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप टप टप टप टप टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं? आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है। तो बच्चों, क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है? अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है? इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है, ये भी ठीक है। इसमें हवा सनसन चलती है, ये भी ठीक है। इसमें बिजली चमकती है, वेरी गुड। और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चलें सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया, हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया। अब बिजली के साथ क्या है, बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने, बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है और पानी के बरसने की आवाज क्या है, झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी। तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आए। झमझम बरस रहा है पानी और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है, नानी। अब हमें करना क्या है, हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी। तो क्या हो सकता है, अब कैसे आएगी नानी। है ना मजेदार कविता। तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता, अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादा अधिकतर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यवसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
9: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
11: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है, तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे, जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूं पर आश्रित है, तो कैसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आपका गांव आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
9: तो सर अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
11: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाए, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
9: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
11: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है, तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नए फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है, फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है, तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे, आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है, तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
9: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
11: जी जी हाँ।
9: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
11: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
9: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
11: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाध में बोलते हैं, बाध बोलते हैं खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाध में है, पश्चिम बाध में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है। और छोटे खेत में आप एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं, या तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
9: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया।

0: बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो हाँ औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
1: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
0: जी जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है। हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है, पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
1: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
0: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया वही 1 बीघा में धान लगाइए, वही 1 बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियां सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियां उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
1: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में. दोस्तों, यूं तो मक्का की जो फसल होती है वो काफी फायदा देती है हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन अगर कीट लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. किस प्रकार से आप कीटों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कीटों से मक्का के फसल को बचा सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं विस्तार से डॉक्टर किरण कुमारी से. मैम है कीट विज्ञान विभाग से, मैम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल को कौन कौन से कीट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं.
1: जी, मक्का फसल जो है वो हमारे बिहार के कंडीशन में सालों भर लगाए जाते हैं, यानी खरीफ, रबी और गर्मा, तीनों मौसम में जो मक्का है वो उगाया जाता है. और लगभग तीनों सीजन में मक्का को कीट जो है वो खाकर उसको हानि पहुंचाते हैं. और इन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में मक्का का तना छेदक कीट, कटुआ पिल्लू, सफेद ग्रब, लाही, फॉल आर्मी वर्म एवं कॉब बोरर कीट हैं.
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो आप हमें सबसे पहले बताइए मैम कि तना छेदक कीट, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है.
1: मक्का का तना छेदक कीट जो है, इसका वयस्क पतंग, जो पतंगा जिसको कहते हैं, जैसे वो मौत भी कहते हैं इसको, जैसे बटरफ्लाई होता है दिन में उड़ता है तो रात में उड़ता है, तो ये वयस्क जो है इसका पंख का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है. ये पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर पिल्लू जो भूरे रंग के होते हैं वो निकलते हैं. और ये जो पिल्लू है उनको लार्वा भी कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं. और इन पिल्लुओं के शरीर के ऊपर चार धारियां होती हैं और इनका सिर जो होता है, हेड, वो काला होता है. ये जो लार्वा या पिल्लू हैं ये पत्तियों के गाभा को खाते हैं. और पहले तो जो पत्तियां हैं उनको, चूंकि इनका जो जो लार्वा है, शिशु हैं पिल्लू, इनके जो शुरुआत में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं. इनका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ये पत्तियां चूंकि गाभा में ही मुड़कर रहते हैं और इन पर ये पिन, इनका माउथ छोटा होता है इसलिए पिन के बराबर छेद करके खाते हैं. और जब ये पत्तियां थोड़ा बाहर आती हैं तो ये पिन बराबर छेद जो हमारे वो दिखते हैं वो समानांतर रूप में दिखते हैं. फिर जब यही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो छेद थोड़े बड़े भी दिखते हैं और वो एकदम समानांतर में रहते हैं, क्योंकि वो गाभा के अंदर ही काट कर उसको खाते हैं. फिर ये लार्वा जो है पूरे अंदर तने में प्रवेश करके नीचे तने तक, जो जमीन का लेवल, वहाँ तक भी चले जाते हैं और इस तरह से तनों को खाते हैं. और जिससे कि बीच वाली जो फुनगी होती है वो सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है. चूंकि ये बीच में, बीच की पत्ती सूखती है, बीच में खाते ही हैं वो, तो इसलिए वो जो है उसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी कहा जाता है.
0: जी मैम,
1: इसके कीट जो, ये जो है इसके बचाव के लिए जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटनी के बाद, खेतों के सारे जो भी अवशेष ठूंठ होते हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसी में इसके जो पिल्लू होते हैं या एक पीपा होता है जिससे कि फिर वयस्क निकलते हैं, वो ये दोनों अवस्था, लार्वा पीपा, ये उन ठूठों में ही पाए जाते हैं और जमीन के अंदर वो घुस के रहते हैं. मई और जून के महीने में इसकी खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि ये जो मिट्टी में पड़े हुए इसके लार्वा हैं, पिल्लू हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो जाते हैं और या तो चिड़ियां भी खा जाती हैं. और इसके नियंत्रण के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए. और जब फिर भी अधिक प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीट में फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या डेल्टा मेथ्रिन 1% का प्लस ट्राइजोफॉस 35 EC का मिक्सचर, ये कीटनाशी है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, ये तो बात हो गई तना छेदक कीट के बारे में। मैम, कटुआ पिल्लू भी लगते हैं मक्का के फसलों में, तो उसे कैसे पहचाने और उसके बचाव के लिए क्या करें किसान भाई बहन?
1: जो कटुआ पिल्लू है, इसको कजरा कीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले भूरे रंग का होता है और इसका शरीर बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। इसे जो है, ये मक्का के अलावा अन्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूं, गोभी के जो छोटे पौधे रहते हैं नर्सरी में, उनको भी वो जमीन की सतह से वो काट देते हैं या पत्तियों को भी खा जाते हैं। और इसके जो पिल्लू होते हैं, जो लार्वा कहा जाता है, वो दिन के समय में मिट्टी के ढेलों में या जो दरार हैं उसमें छिपके रहते हैं, और रात के समय या जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकलकर फिर पौधों को काटकर खाते हैं। ये खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिरा देते हैं, यानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इस कीट से बचाव हेतु खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे इसके पिल्लू मर जाते हैं। और जब इसका प्रकोप कम हो तो इस सिंचाई करने से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और खेत में लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए, जो लाइट में इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसके जो लाइट ट्रैप हैं उसके नीचे पानी भर के रख देने से वो उस पानी में सारे वो कीट गिर भी जाते हैं और जिससे कि वो मर जाते हैं। इस तरह से इसका ये एक जो लाइट ट्रैप है वो प्रबंध करता है इस कीट का। और अगर ये जो रासायनिक कीट में, इसका सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, जिनकी क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशी का 3 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% मिक्सचर कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 g प्रति 5 L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमें सफ़ेद ग्रव कीट के बारे में बताइए।
1: सफ़ेद ग्रव कीट, इसे अंग्रेजी में वाइट ग्रव भी कहते हैं, और इसका जो वयस्क है वो बिटल व्रिंग होता है, भौरा जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, और ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, और जो इसके वयस्क हैं वो तो ऊपर पत्तियों को काट कर खाते हैं। और इन अंडों से जब जो मिट्टी में अंडे देते हैं तो इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं वो पौधों की जड़ों को खाते हैं, और इनका आकार जो होता है वो अंग्रेजी का सी जैसा मुड़ा हुआ होता है, सिर इसका भूरा रंग का होता है। और इस कीट के प्रबंधन हेतु जो इसके वयस्क कीट हैं, जो ऊपर में पत्तियों पर रहते हैं, काट कर खाते हैं, छेद बनाकर पत्तियों पर खाते हैं, उनको हाथ से या जाल जो नेट होता है नेट उससे पकड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए। बीज बुआई के पहले जो क्लोरपाइरीफॉस से इसकी बीजोपचार भी करना चाहिए, और मिट्टी में भी क्लोरपाइरीफॉस 2% डस्ट फॉर्म में जो क्लोरपाइरीफॉस है 2% का, उसका 25 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और खरीफ फसल में जब इसका प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्सचर का 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसके छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम। मैम, फॉल आर्मी कीट की क्या पहचान होती है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
1: फॉल आर्मी वर्म कीट जो है, इसका वयस्क मौत होता है यानी पतंगा होता है, और नर मौत जो इसका होता है उसका अगला पंख जो होता है मटमैले पीले रंग का धब्बे लिए होता है, और जो मादा मौत है उसके उसका जो अगला पंख है वो फीके धब्बे रंग का होता है, यानी थोड़ा ये डल कलर का होता है मादा, और नर थोड़ा ब्राइट कलर में होता है। पिछले पंख दोनों के ही उजले रंग के होते हैं, और मादा मौत जो होती है वो मक्का के पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती हैं और इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं उन पिल्लू के शरीर पर, पहले तो ये कलर बता दूं कि ये जो पिल्लू है वो पीले रंग का होता है और ये इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं। जो तना छेदक होता है उसके शरीर पर चार धारियां होती हैं और इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं और सिर पर उल्टे वाई आकार का निशान भी होता है। इसका जो उदर भाग होता है, पिल्लू का जो उदर भाग होता है अंतिम भाग, उस पर चार धब्बे होते हैं और वो धब्बे वर्गाकार में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान है और ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि खेत में कुछ भी नहीं है और अचानक से एक दो दिन के अंदर में पूरे खेत का सफाया कर देता है, क्योंकि ये फॉल आर्मीवर्म किट सबसे पहले 2019 में देखा गया था और अब ये जो है 2020-21 में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो पूरे फैल गया था। अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो अगर ये किट आ जाए तो इसके बचाव के लिए जो है, और ये जो है ना गाभा को अंदर से भी काट कर खाता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने काट कर खा रखा है। और इसके बचाव के लिए जब ये चूंकि ग्रुप में रहता है इसलिए इसको, और इसके पिल्लू शुरू में बहुत छोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर भी दिख जाते हैं, तो पत्ती सहित तोड़कर इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बुआई के 15-20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोप्टेरा फ्रूजी पर्दा ल्यूर जो आता है, उसको लगाना चाहिए इसमें, और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और फिर भी 3% अगर क्षति दिखाई दे शुरू में तो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जैसे निम्बिसिडी नीमाजल का 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि 5% क्षति दिखाई दे तो गाभा में बालू और राख का 1:1 ratio, मतलब आधा बालू आधा राख मिला करके गाभा में देने से जो है ये कीट मर जाता है, क्योंकि ये कीट रात में बाहर निकलता है और जब बालू और राख गाभा में दिया जाता है तो उसके बॉडी में घर्षण से उसके जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। इसके बावजूद भी अगर क्षति हो दिखाई दे तो रासायनिक कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 gram प्रति 5 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी और अधिक अगर क्षति दिखाई दे और पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो बालू और राख का जो गाभा में देते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है और पौधे बड़े हो जाते हैं, तब थायमेथेक्सम 12.6% और प्लस लैम्बडा साहेलोथ्रिन 9.5%, ये मिक्सचर है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, कभी कभी मक्का के फसलों में लाही भी लग जाते हैं, तो लाही की क्या पहचान होती है और प्रबंधन कैसे करें?
1: तो ये लाही जो है इसको मेचा भी कहते हैं, माहू भी बोलते हैं, और ये हरे काले रंग का होता है और कभी कभी ये खरीफ में भी दिख जाता है, सितंबर माह में कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ऐसे तो रबी मक्का पर भी दिखाई देता है और फरवरी माह में, और ये जो लाही होते हैं वो पत्तियों से, इसके वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे ऊपर की पत्ती सूखना शुरू हो कर देते हैं और पौधे बीमार जैसे लगते हैं। और लाही कीट के प्रबंधन हेतु जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, यानी जो येलो स्टिकी ट्रैप है या तो कोई जो डब्बा है उसको पीला से पेंट कर उस पर ग्रीस लगा कर और डब्बे को एक छड़ी के सहारे उल्टा लटका दें, नहीं तो वो जो कार्टून होता है उसको पीले रंग से रंग के उस पर ग्रीस लगा दें और वो तख्ती जैसा वो रहेगा और उसको लकड़ी के सहारे खेतों में लगा दें जिससे कि ये लाही की जो उसमें मूवमेंट होता है तो उस पर जाके सट जाते हैं और मर जाते हैं। फिर बायोपेस्टिसाइड में निम्बी चूर्ण और 5% घोल का 2 छिड़काव करना चाहिए। और अधिक प्रकोप हो जाए तो कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कीटनाशी का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: और अब आप हमें कोबोरर के बारे में बताइए कि ये किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें।
1: ये कोबोरर जब भुट्टा बनने लगता है तब ये हानि पहुंचाता है और ये बहुभक्षी कीट है, यानी ये बहुत से फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। और जब मक्का में भुट्टा लगने लगता है तो ये जो है इसको मक्का को हानि पहुंचाता है। और इस कीट का जो पिल्लू होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है। इस कीट का वयस्क जो होता है वो भी पतंगा होता है और पीले भूरे रंग का होता है। ये पतंगा जो है वो हल्का अंधेरा जब होने लगता है या सूर्यास्त के बाद तभी वो दिखाई देता है, और फिर रात में भी पूरे रात जो है ये उड़ता रहता है फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर वो जब भुट्टा है उसके ऊपर भी अंडे दे देता है जिससे पिल्लू निकलकर भुट्टे के अंदर घुस जाते हैं और भुट्टे को फिर खाकर बर्बाद कर देते हैं। और इसका प्रकोप नवंबर से अप्रैल माह तक बहुत ही अधिक रहता है। तो कोबोरर कीट का प्रबंधन के लिए प्रोफेरोमिन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसका 2 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए, या कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का 3 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। एक और बायोपेस्टिसाइड जो स्पिनोसाइड, इसका भी छिड़काव करना चाहिए। 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हर एक कीट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, अगर किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मक्का के फसलों को बहुत कम नुकसान होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद उमा जी। 90.8 FM ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है, चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पौध तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
5: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं सर?
9: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं, एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं। पिटूनिया लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें हंड्रेड से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सूटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
5: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
9: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी करेंगे, जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं। तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वेराइटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
5: सर अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है, प्रमाणिक है, वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है उसका किस्म, जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है, और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खासकर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
5: जी सर, सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
9: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, बहुत छोटे मतलब 1000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए, उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाय वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे, इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल, वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है वो सीड को सोइंग करना ऊपर से, फिर हल्का सा पर्थ फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर, इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया, मेनली मीडिया जो है आप सोइल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
5: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
9: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए। मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
5: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
9: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर। और दूसरा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा, फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
5: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की, तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
9: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहां आपको लगाना है या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहां लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में लगा सकते हैं।
5: जी सर।
9: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाए तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
5: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं, बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
9: हाँ, इसमें ये है जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं, तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
5: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
9: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ना तो इसमें जल्दी करना है और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा और अगर ज़्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है, उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है उसको ध्यान रखना है, यही मेन इसमें देखने की चीज़ है।
5: जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
10: उन्नत कृषि
11: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
12: जी
11: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
12: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
11: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
4: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
4: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
6: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
4: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य

0: बुआई करें और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए
मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हमारा विषय है मसूर में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। आप दलहनी फसलों पर शोध कर रही हैं और किसानों को व्यवहारिक तकनीकें उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा। उमा, जैसे कि मसूर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो न केवल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। यदि सही तकनीकों को अपनाया जाए तो किसान भाई अपनी पैदावार और आय दोनों को बढ़ा सकते हैं। मसूर की खेती सामान्यतः तीन पद्धतियां इसमें प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग विधि, जिसमें बीजों को खेत में छिड़क कर बो दिया जाता है। यह सरल और कम लागत वाली विधि है, परंतु बीज समान गहराई पर नहीं गिरते, पौधा संख्या असंतुलित रहता है इसमें और खरपतवार नियंत्रण काफ़ी कठिन होता है तथा उपज अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसके बाद जो आता है वो है शून्य जुताई, जिसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं, जिसमें बिना जुताई के मशीन द्वारा सीधी कतार वृद्ध बुआई की जाती है। इससे मिट्टी की नमी व संरचना सुरक्षित रहती है, समय व लागत की बचत भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में समान गहराई पर बुआई होने से अंकुरण व उत्पादन बेहतर होता है। हालांकि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी पर निर्भरता बढ़ सकती है, तो अंततः हम वैज्ञानिक खेती जिसे हम सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते हैं, जिसमें कि उन्नत किस्में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार, उचित दूरी पर कतार वृद्ध बुआई, समय पर सिंचाई, खरपतवार व कीट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे पौधों की संतुलित वृद्धि, अधिक फलियां, उच्च उपज तथा बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होता है। इसलिए अधिक उत्पादन और लाभ की दृष्टिकोण से मसूर की वैज्ञानिक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: मैम, जैसे कि आपने बताया कि मसूर की जो खेती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मसूर की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक खेती से हम अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से खेत का चयन करेंगे और तैयारी कैसी करनी चाहिए।
1: देखिए, मसूर दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। खरीफ फसल या धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पाटा लगाएं। खेत समतल और नमी युक्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
0: और मैम, बुआई का सही समय क्या होता है?
1: बुआई का सही समय, जैसे असिंचित क्षेत्रों में बुआई का जो सही समय है वो है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और सिंचित क्षेत्रों में बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। और देर से बुआई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सही समय पर बुआई ज़रूरी है।
0: मैम, सही समय के साथ उन्नत किस्म भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिसे किसानों को अपनाना चाहिए?
1: छोटे बीज वाली किस्में जैसे पूसा अगेती मसूर, जिसे हम L4717 के नाम से भी जानते हैं, और IPL 316 और Hull 57, अब बड़े बीज वाली किस्में जैसे IPL 220, ये सारी किस्में रोग रोधी हैं और अधिक उत्पादन भी देती हैं।
0: तो किसान भाई बहन बीज की क्या मात्रा लें और किस विधि से बुआई करें?
1: देखिए, छोटे बीज वाली जो किस्में हैं, इसमें जो बीज मात्रा है या बीज दर है वो होना चाहिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर बड़े बीज वाली किस्में हैं तो उसमें जो बीज दर होना चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, और अगर विलंबित बुआई हो रही है तो उसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें, और बीज गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: मैम, कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, तो मसूर में बीजोपचार कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: मसूर में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है तथा फसल को प्रारंभिक अवस्था में मृदा एवं बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले बीजों का रासायनिक उपचार करना चाहिए जिसमें थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या साफ जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है जिसे हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करते हैं। ध्यान रखें कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग अकेले ना करें, केवल अनुशंसित मिश्रण का ही उपयोग करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाकर जैविक उपचार करें जिससे जैसे कि राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज के दर से, और इसमें हम PSB कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बोलते हैं, समान मात्रा में प्रयोग करें जिससे PSB यूज़ करने से इससे ये मदद मिलती है जिससे फॉस्फेट पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। इन उपायों से उकटा रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव मिल सकता है और बेहतर अंकुरण प्राप्त होता है, मजबूत पौध स्थापना तथा अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
0: मैम, किसान भाई बहनों के मन में एक और सवाल होता है, एक और परेशानी होती है कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, तो आप ये बताइए।
1: इसके लिए हम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, साथ ही 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और अगर सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं, और जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 10 किलोग्राम बोरेक्स मिक्स करके दे सकते हैं।
0: और सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: मसूर प्रायः ही असिंचित क्षेत्रों में होती है, बुआई से पहले हल्की सिंचाई देना लाभकारी है। नमी की कमी होने पर 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई करें, अधिक सिंचाई या जल भराव से फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: मैम, फसल के साथ अक्सर खरपतवार उगाते हैं, तो मसूर के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: इसके लिए समय वृद्ध निराई गुड़ाई और रसायन प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण संभव है। प्रमुख जो इसमें खरपतवार हैं वो हैं मोथा, दूब, बथुआ, मीसिया, वन प्याजी। इसके लिए पेंडीमेथिलीन 30% EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के अगले दिन 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बुआई के बाद 50 दिन तक खेत खरपतवार मुक्त रखें, और हाथ से निराई गुड़ाई भी उपयोगी है।
0: और मैम, किसान भाई बहन मसूर के फसल में रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं?
1: इसमें जो मुख्यतः रोग हैं जैसे रतुआ रोग, उकटा रोग और शुष्क मूल विगलन, तो इसके लिए रतुआ रोग के लिए जो प्रबंधन है कर सकते हैं वो है मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करें, और उकटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें, और शुष्क मूल विगलन के लिए समय पर बुआई और उचित नमी खेतों में रहना लाभकारी हो सकता है।
0: मैम, और भी कोई अन्य तकनीक जो किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
1: जैसे फसल चक्र अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसूर में मोस्टली टीसी या अलसी या अन्य फसलों के साथ मिलाकर बौना रोग प्रबंधन में ये बहुत सहायक है, सहायता मिल सकती है। और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे खेत में अविघटित कार्बनिक पदार्थ ना छोड़ें, और जब फलियां पक जाएं तभी भूरे रंग की हो जाएं तभी कटाई करें।
0: तो ये कुछ चीज़ें अपनाकर किसान भाई बहन अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन और तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आप समय पर बुआई करते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और खाद का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो मसूर के पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि आप पा सकते हैं। तो ये केवल न आपकी आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखता है। मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए बने रहें। हम हैं क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।